उसकी तो कहीं भी कोई गुंजाइश और इजाजत रह नहीं जाती। फिर इसी तरह मुकातिल कहते हैं इब्दाउ कलाइदिहा व कुर्तिहा व उनुकिहा, तबर्रुज का माना है औरत का अपने हार, अपने बुंदे और गला नुमाया करना, यानी हिजाब इस तरह पहने कि वो कान के पीछे चला जाए तो कांटे नजर आए, गले के पीछे चला जाए तो गर्दन नजर आए, और जो जेवर वगैरह पहना है वो पूरी तरह नुमाया हो, ये तबर्रुज में आ जाता है। मुबर्रत का कौल है, ये एक लुगवी है, मुबर्रत का कौल है कि औरत अपने वो महासिन जाहिर कर दे जिनको उसे छुपाना चाहिए, यानी खूबसूरती की वो चीजें जिनको अल्लाह ताला ने छुपाने का हुक्म दिया, जैसे सूरत नूर में गुजरा है कि वलियद्रिबना बिखुमुरहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, कि वो अपने दुपट्टे, खुमर खिमार की जमा, खिमार दुपट्टे को कहते हैं, अपने सीने पर डालकर रखें, क्योंकि तबर्रुज में सीने का नुमाया करना भी आ जाता है, क्योंकि तबर्रुज का लफ्जी माना क्या है, उभार या उभर कर सामने आना। अबू उबैदा कहते हैं कि अंतुखरिज मिन महासिनहा मा तस्तदई बिही शहवतुर रिजाल, औरत अपने जिस्म और लिबास के हुस्न को इस तरह नुमाया करे जिससे मर्दों को उसकी तरफ रगबत हो, अट्रैक्शन हो, शहवत हो, यहां अरबी में लफ्ज शहवत इस्तेमाल हुआ है, किन्हीं मर्दों के जज्बात को भड़काने वाला लिबास, नाजो अंदाज और वो तमाम चीजें इस्तेमाल करना। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियत अलूला, और जाहिलियत का लफ्ज जो है वो इस्लाम से पहले दौर के कामों के लिए इस्तेमाल होता है, और दौरे जाहिलियत में औरतें, अरब औरतें सर ढांकती थीं, लेकिन ढांकने का अंदाज ऐसे होता था जैसे आजकल आपने कश्मीरी औरतों को बाज़ुकत स्काफ पहने देखा हो, क्योंकि पहन के वो पीछे फेंक देती हैं, कि जिससे सीना, गला, हार, कांटे सब जीनत नुमाया हो, तो इस स्टाइल से रोका गया है। ला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियत अलूला, यानी जाहिलियत अलूला से एग्जाम्पल दे के बात समझाई गई कि उन जैसे नहीं बनना, तुम जाहिलियत के तरीकों को फॉलो नहीं करना, तुम मुसलमान औरतें हो, इस्लाम के तरीके को फॉलो करोगी। तो मुतबर्रिज औरत वो जिसका सर ढका ना हो, तबर्रुज खासतौर पर सर के खोलने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि जिस्म पर तो कुछ ना कुछ उड़ा ही होता है। मुतबर्रिजा उस औरत के लिए बोला जाता है जो मर्दों के सामने अपने हुस्न और अपनी खूबसूरती का इजहार करे। तो चादर उतारने की इजाजत किन बूढ़ियों को है, जिनके अंदर अपनी नुमाइश का जज्बा खत्म हो चुका हो। ये बूढ़ी औरत के ऊपर बड़े अच्छे शेर किसी ने लिख के भेजे हैं, है ये बूढ़ी औरत का हाल, सफेद हो गए उसके बाल, सूख चुकी है उसकी खाल, हो चुकी है वो बदहाल, फिर कैसे ओढ़े वो पिशाल यानी चादर, धीमी हो जाए उसकी चाल, खत्म हो जाए उसका जलाल, बात बात पे करे सवाल, है ये बूढ़ी औरत का हाल। तो ऐसी औरत जो है इसके ऊपर कवायद मिनन निसा में आ जाती है ये बात, ठीक है, जो अपनी से वो जीनत से आरास्ता हो, खा वो कितनी भी बूढ़ी हो, उनको इजाजत नहीं कि वो चादर उतारे। وَأَيَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تدخلوا بيوت النبي, نہ تم داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں,

और बाज वक्त मैंने ये भी बहुत सारी जगहों पर देखा है कि जिन देवरों की शादी नहीं होती वो इधर की उधर लगा उधर की उधर लगा, यानी शोहर तो निगरानी करते ही है, वो एक और बहुत से निगरान पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से बसावकात मुश्किल हालात हो जाते हैं। कहते मुझे ये शायद नहीं हुआ, मैं तुकल्लब वजूह हूँ फिन्नार, यहाँ खास तौर पर चेहरों की बात की गई है ना कि जिस्म तो सारा होगा आग में लेकिन चेहरे क्यों उलट पुलट किए जाएंगे। आप जरा गौर कीजिए शायद पर, ये इन्होंने लिखकर भेजा ना, यानी सारा जिस्म है लेकिन चेहरे की बात क्यों की गई। असल में इसलिए भी बात करना चाहती कि अभी चेहरे के बारे में बहुत से सवाल भी आए हैं दूसरे रेफरेंस में, पर्दे के रेफरेंस में, कि चेहरे का पर्दा है या नहीं। तो यहां भी चेहरा ही क्यों जिक्र किया जा रहा है, वजह क्या है? इंसान की पहचान चेहरे से है, जिस्म का अहम तरीन हिस्सा चेहरा है, इंसान का खूबसूरत तरीन मुअज्जज़ हिस्सा। आप देखें कि हजरत मूसा अलैहि सलाम के लिए जो लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हुआ काबिल गौर है, वकाना इंदल्लाहि वजीहा, वो अल्लाह के यहाँ चेहरे वाले थे। तो इंसान की इज्जत, जिल्लत, खुशी, गम, दुख, परेशानी, डिप्रेशन, बीमारी, मरज, तहत, हर चीज का इजहार इंसान के चेहरे पर होता है। मोहब्बत, नफरत, हर चीज यहीं से जाहिर होती है। ये छुप गया तो सब कुछ छुप गया, ये जाहिर हुआ तो सब कुछ एक्सपोज हो गया। जी हाँ, चेहरे पर कोई ऐब और दाग हो तो सबसे ज्यादा उसकी फिक्र होती है। तो जब यह कहा गया कि अल्लाह ताला उनके चेहरे उलट पुलट करेगा, तो मतलब यह है कि सबसे पहले चेहरों को दागदार किया जाएगा। चेहरा एक आईना है ना, हर चीज का आईना, हर चीज दिखाता है। अगर उसको छुपा दिया जाए तो हाथों से नफरत या मोहब्बत नहीं पता चलती। तो क्यामत के दिन भी इंसान को, यानी ये सख्त तरीन सजा है ना, किसी का चेहरा बिगाड़ना सख्त तरीन सजा है। कहते जिस्म को अगर एक इमारत से तशबीह दी जाए और चेहरे को मेन गेट से, तो इमारत को अगर महफूज करना है तो मेन गेट को बंद करना जरूरी। सवाल है, सूरत अल अज़ाब आयत 59 में निसाइल मोमिनीन का तर्जमा मोमिन औरतों को, मगर तफसीर में आपने कहा मोमिनों की औरतों को, बराए मेहरबानी इसको वाजे कर दीजिए। बात यह है कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा था ना कि आप कहिए अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मोमिनों की औरतों को, यानी इससे बताना क्या मकसूद था कि मोमिन भी अपनी औरतों को कहें, ठीक है, इसलिए ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुआ। तो मोमिनों की औरतें कौन होगी? मोमिन। तो इसलिए आमतौर पर इसका तर्जुमा जो बामुहावरा होता है वो मोमिन औरतें कर दिया जाता है, इसमें ऐसा कोई गलती नहीं है। लेकिन बिल्कुल लफ्जी तर्जुमा और उसकी रूह क्या है, निसाइल मोमिनीन, ये कौन सा मुरक्कब है? निसाइल मोमिनीन मुरक्कब इजाफी है, मोमिनों की औरतें, तो मिन की वजह से निसा पे जेर लगी है, निसाइल मोमिनीन है, ठीक है, मुजाफिला होने की वजह से मोमिनून की बजाय मोमिनीन है। यौम तुकल्लब वुजूहुम, कि इंसान के चेहरे में जो हवास खमसा है, इंसान अपनी जिंदगी में इन्हीं से अल्लाह की नाफरमानी करता है। गुनाह के जितने भी काम हैं उनकी इब्तिदा चेहरे से होती है, चेहरा डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि चेहरा इंसान की पूरी शख्सियत का नुमाइंदा है, यानी पूरे इंसान का रिप्रेजेंटेटिव है। सर को कहते हैं ना, तो हेड, किसी भी मुल्क का हेड, हेड सर को बोलते हैं। और जिस्म में सर की हैसियत क्या है, बहुत अहम है। अच्छा, आप देखिए, हाथ काट दिया जाए तो इंसान सरवाइव कर लेता है, लेकिन अगर हेड उड़ा दिया जाए तो सरवाइव करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए सर हो या चेहरा, कुरान पाक में उसका जिक्र इसी वजह से बार बार आया है कि वो अहम तरीन हिस्सा है। अच्छा, बहुत से सवाल चेहरे के पर्दे के बारे में है। बात यह है कि एक हदीस है, इस्तफ्त कल्बक वलव अफतू का, अपने दिल से फतवा लो, हाँ लोग फतवा दे दें, मुझसे फतवा न लें, जो मुझे समझ में आता था वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि किसी ने लिखा है कि जो दो राय पाई जाती हैं आप दूसरी राय के भी दलाइल दें, मेरे पास तो कोई दलाइल नहीं है दूसरी राय के, जिसके पास है वो आके दे दे, मेरे पास जो दलाइल थे वो मैंने आपके सामने रख दिए, जो मुझको समझ में आया है मैं उस पर अमल कर लेती हूँ। लिहाजा हर एक का मामला उसके रब के साथ है, इसलिए इस मौजू पर इससे ज्यादा मजीद बहस का फायदा नहीं होगा।

कोई हवेली भी ना बचे दुनिया में। इन्नका इंतजर हम युजिल्लू इबाद का वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफारा। मेरा अल्लाह, अगर आपने इनको छोड़ दिया, अगर आपने इनको मोहलत दे दी, अगर आपने इनको हलाक न किया, तो इनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो भी नहीं होंगी मगर या फाजिर होंगे, काफिर होंगे, वो भी तेरे फरमाबरदार इताअत गुजार नहीं होंगे। याद रखो, बाद जाहिल लोग जो हैं इन्हीं आयात से लोगों के अकीदों को गुमराह करते हैं। वो कहते हैं देखो जी, अल्लाह के नबी को आखिर इल्मे गैब था। अल्लाह का नबी इल्मे गैब से ही बता रहे थे ना कि अल्लाह आने वाली नस्लें भी ईमान नहीं ले आई, और ये भी बतला रहे हैं कि आगे जो पैदा होगा या काफिर होगा या फाजिर होगा। इसका मतलब यह है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के इल्मे गैब। हालांकि ये जहालत है, अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया पर ये इल्जाम है और अल्लाह के कुरान से सरासर इनकिराब। उसकी वजह यह है कि अगर उनके दिल में जर्रे के बराबर भी खौफ होता तो नूह अलैहिस्सलाम के अपने किस्से में मौजूद है कि मैं कभी इल्मे गैब का दावा नहीं करता। वाला अकूलु लकुम मिन्नी आलमु गैब। और दूसरी बात, नूह अलैहिस्सलाम का ये कहना कि उनकी औलादें काफिर होंगी, तो ये 950 साल जो बंदा आजमा चुका हो, 100 साल नहीं, 950 साल, यानी 9 सदियां बीत गई, 50 साल ऊपर गुजर गए, कई लोग पैदा हुए, कई मर गए, कई नस्लें बदल गई, ये तो एक खुली सी बात। आप देखें ना, आप भी जब देखते हैं किसी आदमी को, किसी बच्चे को, आप एक दिन, दो दिन, चार दिन, 6 महीने, साल मेहनत करते हैं, आप कहते हैं भी तुम नहीं सुधरो, बस भाई सवाल ही पैदा, तुम्हारे सुधरने का तो कोई सवाल ही पैदा, क्योंकि मैं तजर्बा कर चुका हूं इतने अरसे से कि तुम्हारे अंदर कोई तब्दीली ही नहीं आती। ये इल्मे गैब नहीं था, बल्कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपने तजर्बे की बिना अल्लाह तबारक व तआला से जब दुआ की नूह अलैहिस्सलाम ने, तो अल्लाह ने उनकी दुआ जो थी वो मंजूर कर, और अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया नूह अलैहिस्सलाम को कि अब एक बात जो है वो अच्छी तरह समझ। वूहिया इला वूहिन, अल्लाह ने वही, इन्नहु लयूमिन मिन कौमिक इल्ला मन कद आमन, कि बस अब आपकी कौम से और कोई ईमान, चूंकि अल्लाह तो जानते बस जो ईमान ला चुके ला चुके बस पर और कोई। लेकिन एक बात नूह अलैहिस्सलाम याद रखना कि जब मेरा अजाब आ जाए तो फिर इनके लिए बख्शिश नहीं मांग, इनके लिए फिर मोहलत नहीं मांगनी, ऐसा ना हो कि अजाब देखने के बाद आपका दिल नरम हो जाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया नूह अलैहिस्सलाम को, जिसका जिक्र कुरान पाक में मुतअद्दिद सूरतों में मौजूद है, कि वस्नाइल फुल्क भी आयुनिना, कि कश्ती, इसीलिए सबका किताबों में यह बात भी मिलती है कि नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह के हुक्म से दरख्त लगाए, और वो दरख्त जो है तकरीबन माशाअल्लाह 100 साल तक बढ़ते गए और बढ़ते गए और बढ़ते गए। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को आके तालीम दी कि भी कश्ती कैसे बनानी है, जो कि नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाना तो नहीं जानते। उन्होंने आपको तालीम दी कि इस तरह लकड़ियों के फट्टे बनाएं, इस तरह आप तख्ते बनाएंगे, इस तरह आप जनाब मसानीद लाएंगे, इस तरह फिर उनको जोड़ा जाएगा और इस तरह वो तैयार होगी। तो नूह अलैहिस्सलाम सबसे पहले आमल नज्जार जो है, यानी जिसे आप उर्दू में दरखान कहते हैं या लकड़ी का काम करने वाला कहते हैं, बड़ी का काम जो है सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शुरू। और खुदा की शान देखेंगे, नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं खुश्की में, यानी कश्ती तैयार हो रही लेकिन मैदान में, और कश्ती भी माशाअल्लाह कितनी बड़ी थी। बहुत सारे अकवाल हैं लेकिन राज्य कौल यही है कि तू लुहा सला समय अतरा इन व अर्जुहा खमसून देवा अन, कि लंबाई जो थी वो 300 हाथ और अर्ज जो था चौड़ाई जो थी वो 50 हाथ और उसकी ऊंचाई जो है वो थी सला सून देरा अन 30 हाथ। बाद उलमा ने 1200 हाथ भी लिखा है कि 1200 हाथ लंबा था और 300 हाथ चौड़ा था। असल वजह यह है कि यह इख्तलाफ नहीं होता, एक तो रिवायात है कुतुब साबका से, और दूसरी बात यह होती है कि उस जमाने में तो अभी कद हमारे तरह तो नहीं थे, वो तो नूह अलैहिस्सलाम से फिर भी ज्यादा करीब के लोग थे ना। नूह अलैहिस्सलाम का कद जो है वो 60 हाथ था,
اس کے بعد کم ہونا شروع ہوا. تو اب اگر یہ اتنا بچا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی قد بڑا ہوگا, جب قد بڑا ہوگا تو ہاتھ خود بخود بڑا ہوگا, جب ان کے 300 ہاتھ ہوں گے تو ہم تو پتہ نہیں 1200 یا اس سے بھی زیادہ ہمارے ہاتھ بن جائے. تو اس لیے بعض مورخین کو یا بعض اہل سیر کو اس پہ اختلاف لگا, لیکن راجح قول یہی ہے کہ 300 بخمسون ذراعن, 300 ہاتھ لمبا اور 50 ہاتھ جو ہے طول تھا, اور اونچائی جو تھی وہ 30 ذراعن وثلاث طبقات, اس کے 3 تہ بنائے گئے یعنی 3 منزلہ کشتی تیار کی گئی, ومطبق من فوقها, اور اوپر سے بھی حکم تھا کہ اس کی چھت ڈال دی جائے تاکہ بارش جو ہو رہی ہے یا آسمان سے جو پانی برس رہا ہے وہ بھی اس کو متاثر جو ہے نہ کر. اچھا اب اللہ کی شان دیکھیں کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جو تھوڑے بہت تھے, زیادہ تو تھے نہیں, کیونکہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے ہیں وہ کتنے تھے, 80 آدمی تھے سارے, یعنی عورتوں کے ساتھ, مردوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, سارے 80 آدمی قریب نوح علیہ السلام کے ساتھ. تو اب نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کرتے اور قوم کے بندے کو درتے تو وہ مذاق کرتے, وہ کہتے دیکھا جی ہم نہیں کہتے تھے کہ نعوذ باللہ دیوانہ ہے, ہم نہیں کہتے تھے کہ مجنون ہے, بھلا یہ کشتی بنانے کا کیا ہے, کہ آپ کو دریا ہے کہ کشتی چلے, یا آپ کو سمندر ہے کہ کشتی چلے, بھلا کشتیاں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ خشکی پہ چلی ہوں. یہ تو نوح علیہ السلام جو ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, ان کا ذہن جو ہے وہ متاثر ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے. اب اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اب طوفان آ رہا ہے, اب پانی آ رہا ہے, اب کشتی پانی میں آئی. اللہ نے حکم دے دیا کہ حتی

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
2: औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामाइन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है। जिस तरह हमने सुबह ऐलान किया था कि आज हमारे मेहमान होंगे और हेल्पिंग इम्यूनिटी की जो टीम है वो भी हमारे साथ होगी, फोरमैन भी होंगी और नाइफ फरमान भी होंगी। और हमने जो पहले हेल्पिंग इम्यूनिटी के फोरमैन थे साकिब तस्नीम, मैंने इस पिछले हफ्ते में 3-4 बार उनसे राबता किया, लेकिन मेरा राबता उनसे नहीं हो सका, वो टेलीफोन उनका एंगेज हो जाता है। बहरहाल हमारी उनके लिए ऑफर है। मैंने टाइगर ग्रुप वालों को भी कहा था कि आप साकिब साहब को कहें, चूंकि वो आपके ग्रुप के हैं, तो उन्होंने कहा जी हम राबता करेंगे, वो भी फोन नहीं उठा रहे। बहरहाल उनके लिए अदारा आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है, आप उसमें शामिल होना चाहें, इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें, तो आप प्रोग्राम में अब भी वो शामिल हो सकते हैं। तो समझ, इस वक्त हमारे साथ आपके अपने अली जावेद, सबा नवाज और नायला वसीम जो हमारे साथ मौजूद हैं। हम सब मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं।
3: शुक्रिया। शुक्रिया
2: अली, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
4: जी बहुत शुक्रिया अंकल आपका और तमाम सामईन को। अस्सलाम वालेकुम।
2: आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
3: बहुत शुक्रिया।
2: तो हम आपसे सबा शुरू करते हैं। मैं चाहूंगा अली आपसे आज आप स्टार्ट करें।
4: जी बहुत शुक्रिया अंकल। जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि हमने पिछले हफ्ते भी जो हेल्पिंग ह्यूमैनिटी के साबिक चेयरमैन थे साकिब साहब, उनको राबता करने की कोशिश की और आज भी आपने राबता किया। हमारी ख्वाहिश यही थी कि वो भी शामिल होते, तो गलतफहमियां या जो भी लोगों के जहनों में सवाल है, खासतौर पर जो डोनर्स हैं उनके जो सवाल हैं, जो हमें भी आए और आपको भी आए और बहुत सारे इनके हेल्पिंग ह्यूमैनिटी के जो सोशल मीडिया का पेज है उसके ऊपर भी आए, तो वो उनको जवाब दे सकते हैं। मगर बहरहाल जब उनके पास टाइम हो, जिस तरह भी आपने कहा कि वो हमें कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी आपकी आवाज़ उनके लिए अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहूँगा सबा नवाज को और नायला वसीम को, हमारे लिए बड़ी काबिल मोहतरम है। तो सबसे पहले सबा आपसे हम ये पूछेंगे कि पिछले हफ्ते जो आपने हमें बताया, उस पिछले हफ्ते से लेके आज तक कोई आप लोगों की कोई इम्प्रूवमेंट हुई है, कोई आपके मामलात आगे की तरफ बढ़े हैं, खास तौर पे जो आपकी 1.2 मिलियन की अमाउंट बैंक के अंदर स्टक है उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात दीजिएगा, क्योंकि अब लोग जिन्होंने डोनेशन दी हुई है और वो समझते हैं कि 1.2 मिलियन में उनकी भी अमाउंट है, तो वो आप उनको कैसे मैसेज देंगे या सेटिस्फाई करेंगे।
3: जी अली भाई शुक्रिया। मैं आपको ये बता दूं कि पिछले वीक आपसे बात करने तक अभी तक ये हुआ है कि थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में मुझे जाना पड़ेगा और मैं आपको बताऊंगी कि हमारा पुलिस का जो रिपोर्ट हुई थी, मुझे 11 मार्च को पाकिस्तान, उस टाइम मैं बैठी हुई थी जब मुझे पुलिस का फोन आया था और उन्होंने कहा था कि आपको HH के बिहाफ पे आपको पे चार्जेस लगाए जा रहे हैं। और मैंने उनसे पूछा था मुझे क्यों, क्योंकि मेरी तो कभी पोस्ट नहीं रही है ऐसी कोई कि आप मुझे इस चीज के लिए चार्ज करें जो कि साकिब तस्नीम ने 2017 से 2020 तक, जुलाई 2020 तक उसका, जून 2020 तक उसका बनता है, तो इसके लिए मुझे क्यों चार्जेस किए। उन्होंने कहा जो हेड होता है हम उसी को चार्ज करते हैं। तो ये वो चीजें थी जो कि मैंने कहा कि ठीक है, और उन्होंने मुझसे पूरा बयान लिया जिसके बारे में मैंने बताया कि जी मैंने बारहा उनसे कोशिश की है मुलाकात करने की, उनको ऑफिशियल मेल्स किए गए हैं, उनको अनऑफिशियल मेल किए गए हैं, उनको थ्रू दूसरे लोगों के मेल्स किए गए हैं कि वो हमें 2070 से 2020 का डाटा प्रोवाइड करें ताकि हम इसको भेज के तो इस चीज को, मामले को क्लियर कर सकें। एनीवेज उसका ये हुआ कि पुलिस वाले ने पूरा, जब मेरे से आधा पौना घंटा बात की उसने, और फिर उसके बाद एक मेल आती है मुझे साकिब तस्नीम की तरफ से जिसमें वही पुलिस वाला अटैच है और साथ इन सामलिंग जहां पे हमने हमारा केस चल रहा है वो भी अटैच है और साथ इख्तिशाम भाई जो कि हमारे कैशियर हैं वो भी साथ अटैचमेंट में है, सीसी में है, और उन्होंने क्या नाम है ये मेल सबको भेजी जिसके अंदर उन्होंने एक वो हिसाब किताब जो था ना 2017 से लेके 2020 तक का वो उन्होंने भेज दिया और उन्होंने लिखा कि इसके जो बैंक के रिकॉर्ड है ना वो आपको कैशियर या चेयरपर्सन जो उनसे वो प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब ये है कि पुलिस का प्रेशर, जहां तक मेरा ख्याल है क्योंकि मेरी बात नहीं हुई है किसी से, कि पुलिस ने उनको प्रेशर डाला था कि ये आपका काम है, आप कोई चीज उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो आप दें। एनीवेज वो चीजें जब भेजी गई वहां पे क्या नाम है उनको, तो उसके बाद क्योंकि मैं एज अ चेयरपर्सन मैंने वो इन समनिंग निम्न को मेल किया पिछले वीक, और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप उन चीजों को यस करते हैं ताकि मैं आगे से भेजूं, क्योंकि मुझे पता था कि वो यस नहीं करेंगे अली भाई। उसकी मेन वजह, जब आप इन समनिंग निम्न से इजाजतनामा लेते हो तो उस इजाजतनामे में ये होता है कि आपकी अगर 50,000 से कलेक्शन बढ़ जाती है ना एक साल की, तो आपने क्या करना होता है कि आपने वो रिवीजर की रिपोर्ट वो मांगते हैं, जो कि एक रिवीजर बनाता है, ठीक है। उसके बाद जो सीसी मेंबर्स होते हैं वो उसके ऊपर साइन करते हैं, उस जो रिपोर्ट बनती है उसके ऊपर आपके साइन होते हैं सारे मेंबर्स के कि हाँ जी ये ठीक है। उसके अलावा एक होता है कि अगर आपने वो 50 लेट्स सपोज कि हमने 1,00,000 करोन जमा किया, अगर हम वो 1,00,000 करोन उस साल के अंदर और उस जिस पर्पस के लिए जमा किया गया है वो वहां पे नहीं यूज कर सकते हैं, मतलब एक साल के अंदर वो उस कलेक्टिंग ईयर में नहीं हुआ है यूज वो पैसे, तो वो अगले साल में अगर जाता है तो आपको दोबारा फिर उस साल की रिपोर्ट बना के भेजना पड़ता।
4: थोड़ा सा आपको कट करूंगा सभा माजद के साथ, मुझे ये बताइएगा क्योंकि हमने तो देखा है बल्कि एक अच्छी रिपोर्ट सी थी हमारी सबकी नजर में हेल्पिंग ह्यूमैनिटी की, क्या आप लोग अपने हर साल का, जब से हेल्पिंग ह्यूमैनिटी लॉन्च हुई है आपने अपने हर साल की जो है वो रिपोर्ट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रिवीजर के थ्रू सबमिट नहीं की? अगर तो की होंगी तो फिर तो आप लोगों के पास रिकॉर्ड होना चाहिए, अगर प्रीवियस चेयरमैन के पास नहीं है तो फिर आप वो कॉपी जो रिवीजर से निकलवा सकते हैं, अगर तो आपका सारा डाटा डॉक्यूमेंटेड है तो फिर तो मेरे ख्याल से इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए थी सिवाय इसके जो लास्ट।
3: जी बिल्कुल, मैं आपको एक इस सवाल की तरफ मैं आती हूँ, मैं इसको जरा वो दूसरे को ना गौर नहीं कर लूं। उसमें ये हुआ कि जब मैंने उनको लिखा तो उन्होंने पिछले हफ्ते मुझे मेल आई है इन समनिंग निम्न की, जिनमें उन्होंने ऑब्वियस कर दिया है कि हम जो साकिब तस्नीम ने हमें चीजें भेजी हैं वो हमारे लिए उनको ऑब्वियस करते हैं हम ना, अब हम दोबारा से एच एच एजेंसी है वो बनवा रही है रिवीजर से ये चीजें। जो आपने अभी सवाल पूछा है ना, आपको याद होगा कि हम हमेशा हर चीज में कहा करते थे कि हमारे स्टेट्स रिवीजर है जो कि हमारी रिपोर्ट्स बनाता, और ये अगर आप एच एच के पेज पे भी जाके देखें तो वो लगी हुई है रिपोर्ट्स, लेकिन उन रिपोर्ट्स में और जो इन सामलिंग निम्न की रिपोर्ट्स हैं इनमें फर्क है। इन सामलिंग निम्न की रिपोर्ट में आपने लिखना होता है आपने कितना कलेक्ट किया, आपने कितना यूज किया, उसमें से एडमिनिस्ट्रेशन के जो थे खर्चे, मतलब जैसे बैंक के गब्बुआ हो गया या फिर कलेक्टिंग बॉक्स हमने बनवाए या कुछ भी ऐसे, वो एडमिनिस्ट्रेशन के गब्बुआ निकाल के उसके बाद आपने कितने पैसे थे जो आपने इकट्ठे किए और वो कहां पे भेजे, जिस पर्पस के लिए इकट्ठे किए गए उसमें, वो रिवीजर की रिपोर्ट कभी भी नहीं बनी, और इस चीज का हमें बिल्कुल इल्म नहीं था डे वन से लेके, मैं आपको बताती हूँ आज से 3 महीने पहले शायद मुझे पता चला है, और वो भी इसलिए मुझे पता चला है कि मेरी एक्सेस हुई है क्या उसको कहते हैं एच एच के ई बॉक्स में, ठीक है। जब एच एच के ई बॉक्स में मेरी एक्सेस हुई है तो मुझे पता चला कि एच एच तो पुलिस ही अनमेल हो चुकी है, और वो किस लिए हुई है, क्योंकि साकिब तस्नीम ने 2017 से लेके 2020 तक कोई एक भी रिवीजर की जो होती है जो वो बनाता है क्या नाम है, क्योंकि हमारे ऑफ कोर्स 50,000 से ऊपर हमारी हुई है ये क्या नाम है, अगर उसने भेजी भी है तो वो मंजूर नहीं हुई है, लेकिन उसने कभी भी रिवीजर की रिपोर्ट बना के नहीं भेजी है।
4: तो ये नहीं कि अब ये जितनी भी आप स्टेटमेंट या आप रेडियो के ऊपर अपना मैसेज दे रही हैं तो ये आप बकायदा जो पुलिस में आप लोगों का केस चल रहा है तो आपने ये रिटर्न उनको स्टेटमेंट दी है या देंगे कि ये हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है?
3: बिल्कुल, क्योंकि देखें अली भाई मैं आज जो कुछ भी यहाँ पे कह रही हूँ, पहली बात रमजान का मुबारक महीना है, दूसरा हम रोजे में है, तीसरी बात ये किसी पे पर्सनल अटैक नहीं है, ये बहुत प्रोफेशनलिज्म है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम तो इस चीज को छोड़ के बैठ सकते हैं। मैंने पुलिस से पूछा अगर आज मैं रिजाइन दे दूं तो, उसने कहा तो तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं रहता, ठीक है हम तुम्हें चार्जेस नहीं कर सकते क्योंकि तुम रिजाइन दे दोगी। मसला ये है अली भाई कि हम अगर ये चीजों को अभी चल रहे हैं और एक मैं औरत होने के बावजूद ये पुलिस चार्जेस ये सब कुछ मेरे पे हो चुके हैं, तो आप ये सोचें कि हम किस लिए कर रहे हैं कि हम इस चीज को बचा सकें, इस जो 1.2 मिलियन लोगों का है वो किसी तरीके भी हम उसको बचा के सेव करके, क्योंकि 1.2 मिलियन में से अब जो हमें रिवीजर की रिपोर्ट्स बनवानी पड़ेंगी उसका भी काफी भारी खर्चा होगा, ठीक है, क्योंकि रिवीजर जब आप ऐसे मुसीबत में फंसे होते हो आपको पता है, हमने रिवीजर से हमारी जो जितने कैशियर थे ना पुराने उन सब की टीम बैठी हुई है इस टाइम ये रिपोर्ट बनाने के लिए।
4: हमारी तो अभी भी यही ख्वाहिश है, हमने शुरू में भी कहा कि क्योंकि ये एक बड़ी रिनोन और बड़ी इसकी अच्छी रिप्यूट थी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी की, तो साकिब साहब जो हैं वो अभी भी चाहे बाद में भी नेक्स्ट वीक में भी जब भी, ताकि ये मामला जो हैं वो बड़े खुश असलूबी से हल हो जाए, क्योंकि हम सब लोगों का इसमें स्टेक हो या ना हो, मगर वो जिन लोगों ने इतने पैसे दिए जो देना चाहते हैं या जो अभी तक दे रहे हैं उन लोगों को डेफिनेटली कंसर्न है। अभी आपने एक जिक्र भी बल्कि किया कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी आप लोगों के इसमें होते हैं, मगर जहां तक हमने कुछ आप लोगों की प्रेजेंटेशंस को पास्ट में देखा था तो उसमें तो ये था कि शायद आप लोगों के जीरो जो है वो कॉस्ट होती है एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस की, अगर मैं मुझे सही याद पड़ता है, तो आप इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस ये किस चीज के हैं, क्योंकि जो जिस तरह मुझे पता है कि शायद आप लोगों के कोई एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं होते थे, ऑलमोस्ट नहीं होते थे।
3: जी मैं आपको बताती हूँ अली भाई, ऐसा है कि ये जो मैंने आपको बताया ना एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस की ये बात हो रही है, इसके एक और भी मैं आपको बड़ा एक और भी फैक्ट बताते हैं, लेकिन अगर जो बात मैंने की और आप उस पे सवाल पूछ रहे हैं उसमें ये होता है कि जब आपने इन समनिंग निर्णय को अपनी रिपोर्ट पेश करनी होती है ना उसमें ये रिपोर्ट बनती ऐसे है कि अगर आपने कितना पैसा इकट्ठा किया उसमें से कितना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गया, एडमिनिस्ट्रेशन ये रिपोर्ट की बात हो रही है, ये हमारे एचएच की एडमिनिस्ट्रेशन की फीसिस की बात नहीं हो रही, लेकिन वैसे आपको बता रही हूँ कि जोन से एडमिनिस्ट्रेशन की बीच में से काट के उसके बाद कितना पूरा मुनाफा हुआ और उस मुनाफे को आपने किस जगह पे यूज किया ये रिपोर्ट मांगती है, ठीक है। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस की, तो ये वाकई सही बात है कि एचएच हमेशा से उसका पूरा फोकस रहा है कि वो मिनिमल करे, और इसी बात पे जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए साकिब तस्नीम के साथ उनमें से एक वजह ये भी थी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस की, कि कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस आ रहे थे जहां पे मेरे पास वो एसएमएस भी हैं, हमने आपको याद होगा COVID-19 ये जब शुरू हुआ था तो हम लोगों ने 2020 में एक कंपेन चलाई थी फूड पैकेज की, और उन फूड पैकेज में जिस अदारे को साकिब तस्नीम की और हमारी वहां से थोड़ी सी बहस स्टार्ट हुई, मेरी मोस्टली हुई, कि वो जो अदारा था वो अपने 500 रुपीस चार्जेस कर रहा था सिर्फ वो पैकेज डिलीवर करने का, और मेरा यही, और ये मेरे पास एसएमएस पड़े हुए हैं जो हमारी बात होती रही है, ये पिछले रमजान की बात है जहां पे मेरा यही मौकफ था कि आप जब लोगों से 220 करोड़ ले रहे हैं, ये मैंने रिटर्न लिखा हुआ है, तो आप लोगों को बताएं कि आपका 20 करोड़ जो उनसा 500 करोड़ है ना वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन पे जा रहा है।
4: थोड़ा सा मुझे बताइएगा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, क्या आप लोगों का पाकिस्तान में खुद से भी तो छोटा मोटा कोई सेटअप था या कोई आपने कुछ छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ था, तो क्या ये सारे जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इनकी आप जिक्र कर रहे हैं तो क्या ये वहां पे आपकी अगर कोई अपनी टीम थी, मैं क्योंकि गेस कर रहा हूँ, तो क्या वो खुद नहीं हैंडल कर सकते थे या आप किसी?
3: ये हमारी अपनी टीम नहीं थी, हमारा एचएच का हमेशा से दूसरे लोगों के साथ हम लोग काम करते रहे, जैसे अखुवत का, हाँ ये है कि अखुवत का हमारा एक गुजरात में एक वो था क्या उसको कहते हैं कर्जे हिस्ना का एक छोटा सा ऑफिस हम लोगों ने वहां पे स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन उसका ये फूड पैकेज के साथ, क्योंकि देखें जी जब फूड पैकेज जाने होते हैं तो वो पूरे पाकिस्तान के सारे सूबों में हमारी कोशिश होती है कि सारी जगहों पे जाए, सिर्फ एक इलाके को उसका वो ना मिले ना, तो ये एक और अदारा था जिसपे इन्होंने वो 500 रुपया एक पैकेट को डिलीवर करने का लेते थे, और मेरा साकिब तस्नीम से ये सवाल था कि जब 220 करोड़ एक बंदा पैकेज का दे रहा है आप रिक्लेम कर रहे हो कि सारे पैसे गरीबों को जाएंगे, लेकिन क्या आप उनको बता रहे हो कि आपके 20 करोड़ वो सिर्फ पैकेज डिलीवर करने के लिए ले रहे हैं? 500 रुपीज अली भाई एक अमाउंट है, आप सोचे ना अगर हमारे 2400 पैकेट थे ना, 2300 हमारे 2300 पैकेज हमारे गए थे, आप सोचें 500 रुपया एक पैकेज के पीछे, अगर हम क्योंकि तकरीबन 200 पैकेज के बाद आई थिंक कि मैंने 400 पैकेज के बाद मैंने सवाल खड़ा कर दिया कि जी ये 500 रुपया एक पैकेज के पीछे है, आप हिसाब लगाएं 20,000 रुपया बनता है अगर ऐसे, या 20,000 बनता है मेरे ख्याल में उसका 500 रुपये का। तो मेरा ये सवाल था कि सिर्फ पैकेज डिलीवर करने के ये इतने ज्यादा चार्जेस ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये इट इज टू मच ना। और वहां पे हमारी एक समझें कि इतनी रात को रोजा खोलने के बाद मेरी बहस शुरू हुई और वहीं पे सहरी हो गई थी, जिसमें ये मैंने कहा था कि 500 रुपया आप लोगों को यहाँ तो बताएं कि आपके 20 करोड़ हैं जो उनसे वो एडमिनिस्ट्रेशन पे जा रहे हैं, और अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर हमें कोई ऐसा अदारा ढूंढना चाहिए जो कि अल्लाह के लिए फीसबील अल्लाह काम कर रहा हो।
2: मैं सवा आपको रोक रहा हूँ, एक बात को जरा क्लियर कर दें, कितने पैकेज, अगर एक पैकेज पे 500 रुपया जाता है तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा हिसाब किताब हम जरा करेक्ट कर लें, कितने कितने हजार पैकेज आपने दिए थे?
3: 400 पैकेज उस अदारे को गए थे, जिसके बाद मैंने ये सवाल उठा दिया था कि 500 रुपया टू मच है मतलब पैकेज के लिए। उसके बाद हमारी ना वोटिंग स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मैंने
2: अगर इतना आप कहें कि 400 पैकेज गया था तो 500 करें तो ये तकरीबन बहुत सारे पैसे बनते हैं।
3: जी बिल्कुल एग्जैक्टली,
2: ये तकरीबन 2 लाख के करीब बनते हैं।
3: हाँ जी, उस टाइम के मुताबिक ये तकरीबन 1.5 लाख बना था, जिसपे हमें बहुत ज्यादा एतराज था कि यही 1.5 लाख गरीबों के 5,000 3,000 के पैकेजेस चल रहे हैं, कितनी फैमिलियों के घर
4: दिए जाते हैं। 2400 पैकेज यानी कि पूरा बांटते तो इसका मतलब है कि 1.2 मिलियन नहीं, अगर आप
3: जी एग्जैक्टली
4: आपको 1.2 मिलियन आपका उधर चला जाना था। तो ये तो मैं चले थोड़ा नाइला भाभी को भी लेते हैं इसके कन्वर्सेशन में, तो मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास, जैसे आपने बताया कि पिछले साल से आप लोगों की आप प्रेसिडेंट थी और बॉडी चेंज हो चुकी थी, तो क्या ये जो तंजीमी मामलात हैं जिसमें खासतौर पर डिसीजन मेकिंग है, ये तो आप लोगों की जो है वो एग्रीमेंट से या आप लोगों की सिग्नेटरी होनी चाहिए कि जी अगर कोई तंजीम ने कोई फैसला किया तो जब तक प्रेसिडेंट या नायब प्रेसिडेंट या जो जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो इस बजट को अप्रूव नहीं करेगा तो ये नहीं हो सकता, आगे नहीं जा सकता। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि आप प्रेसिडेंट हैं या आपकी दूसरी टीम और चेंज हो चुकी है, उनको पता ही नहीं और वहां पे जो है आप इतना पैसा जो है वो दे रहे हैं या आपका प्लान है 1.2 मिलियन देने का, ये कैसे पॉसिबल है?
3: जी मैं आपको ये वाजे कर दूं कि ये प्रेसिडेंट बनी है सभा और मैं नायब प्रेसिडेंट बनी हूं जुलाई में, और ये बात चल रही है पिछले रमजान की, जबकि फॉर्मर प्रेसिडेंट साकिब तस्नीम साहब ही थे और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई थी और ये सारी बातें शुरू हो गई थी। उसमें फिर हमने, इन्होंने जो फैसला किया था जिस तंजीम के साथ, ये सारे पैकेजेस उधर देना चाहते थे, और जब हमने अंदाजा लगाया कि टोटल हमारे 3300 पैकेजेस डिलीवर हुए हैं पिछले साल रमजान पैकेजेस, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि सारे देने हैं, लेकिन इन्होंने 400 तक का उनको यस कर दी थी इदारे को, जिनके जो 500 करोड़ रुपए ले रहे थे, सॉरी, ठीक है। हमने उधर जाके कॉन्फ्लिक्ट शुरू की कि हम वोटिंग करेंगे, हम फिर ऐसा इदारा ढूंढने जाते हैं जो बिल्कुल डिलीवरी फीस ना हो, ठीक है, हम यानी कि वो फीस अभी लीला करें। फिर हमने 2300 पैकेजेस अकूवत को आई थिंक और तकरीबन 1000 पैकेजेस कजाली को ये हमने भेजे बाद में, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन फीस जीरो थी। तो ये क्योंकि उन्होंने जिद लगा ली थी हमसे और उनका यही मौकफ था कि नहीं जी हमने उन्हीं को भेजने हैं, इस बात से कॉन्फ्लिक्ट शुरू, ये मार्च की बात है। और ये जो आप कह रहे हैं, हम जब
4: मेरा कंसर्न है, मेरा कंसर्न तो यही है, चले पिछले भी जितने भी सालों से आपकी तंजीम चल रही है तो यहाँ पे तो यही सवाल उठता है, तो क्या जो इतने मामलात होते रहते हैं या होते रहे हैं खासतौर पे फाइनेंशियल, तो क्या आपकी पूरी टीम में इसकी जो अप्रूवल नहीं ली जाती थी खासतौर पे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं कि जी हम ये करने लगे और हमारी ये कॉस्ट है जो अब हम डिलीवर करने लगे हैं, तो क्या ये नहीं ली जाती आपसे पहले?
3: देखें शुरू में हम लोग कौंसिल का हिस्सा नहीं थी, ठीक है, तो हमारे सीसी के मामलात होते थे, ये कौंसिल में डिस्कस होती थी चीजें। हम लोग कौंसिल में आई है लास्ट 1.5 साल से, जब तकरीबन इनके रिजाइन देने से 1 साल पहले हम कौंसिल में आई हैं। जब से हम कौंसिल में आई हैं तब से हमने सवाल करने शुरू किए। एक बात अब गौर कीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन जब से बनी है ना, साकिब तस्नीम साहब ही उसके प्रेसिडेंट रहे हैं। अब जब वो चीजें लोग उनसे राबता करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग या जो भी, वो हमें तो नहीं करते थे ना, वो पीआर मैनेजर को या जनरल सेक्रेटरी को तो नहीं करेंगे, वो तो उन्हीं को करते थे राबता। इनका सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि इन्होंने हमें शेयर ही नहीं की, ना कैशियर किसी के साथ, ना किसी जनरल, मतलब कोई टीम में ये बात शेयर ही नहीं हुई, जिसकी वजह से मामला खराब हुए। जैसे ही सभा बनी है, प्रेसिडेंट तो उनके पास, जब एसएसआई, पहले तो उनके पास एसएसआई नहीं थी, ठीक है, एचएच के ई बॉक्स की, जैसे ही उनके पास आई तब ये सारे कट्टे खुले हैं ना कि इन्होंने 2017 से पेपर वर्क खराब किया हुआ है। मसला ये था कि वो अपने आप को माशाल्लाह बहुत पढ़ा लिखा और एक अच्छा मंझा हुआ डेनमार्क का कारकुन समझते हैं। वो मेरे ख्याल में हमसे शेयर इस वजह से नहीं करते थे कि उनकी ये जो नालायकी हुई है या जो पेपर वर्क खराब हुआ है वो सबके सामने आएगी तो लोग कहेंगे ही इज नॉट अ गुड लीडर एंड नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, तो फिर तो उसकी जगह नहीं बनती है।
4: नहीं, मतलब मेरा उनसे तो चले थोड़ा सा वो इस बारे में जिस आप बता रही हैं इख्तलाफ हम कर सकते हैं, मगर मेरा इख्तलाफ तो उस वक्त की जो आपकी सीईसी के मेंबर थे, आप तो चले साल दो साल पहले आई हैं, तो उन लोगों से भी उतना ही बनता है कि क्या उन लोगों ने उस वक्त की टीम ने कभी इस बारे में पूछा ही नहीं, जिक्र ही नहीं किया कि ये सारे डिसीजन आप खुद ले रहे हैं, क्योंकि जवाब दे तो जिस तरह भी आप पुलिस में जो है वो सभा जवाब दे हैं या आप लोग हैं, तो इस तरह तो वो लोग भी हो सकते हैं कि बैंक में अगर फाइनेंस सेक्रेटरी का कोई नाम है तो वो अगर उसके अकाउंट से ट्रांजैक्शंस होती हैं या उसके नाम से होती हैं, तो ये सारी चीजें तो एक कलेक्टिव टीम का हिस्सा होना चाहिए। तो मेरा तो कंसर्न फिर उनसे भी बनता है जो पुरानी टीम के सीसी के लोग थे कि उन लोगों ने ये सवाल उस वक्त क्यों नहीं उठाया कि हमें ये बातें शेयर क्यों नहीं की जाती अगर नहीं की जाती थी तो।
3: अच्छा अली भाई, इसका जवाब मैं दूंगी। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हम थे 18 लोग जिन्होंने स्टार्ट किया था, जिसमें दूसरे कैशियर भी आए, दूसरे लोग भी आए, ठीक है, ये चीजें शेयर होती रही। और जिन जिन लोगों से ना ये साकिब तस्नीम इस दायरे को छोटा करता गया, ये कुछ लोगों को साथ लेके अपने साथ चलता गया और हम लोग ब्लाइंडली उस पे ट्रस्ट करके चलते रहे। जहां पे हमारी गलती है वो है हमारा ब्लाइंडली ट्रस्ट उस बंदे पे, हम उस पे चलते रहे क्योंकि हमें वो इन्वॉल्व रखता रहा। हमारे यहाँ था वोटिंग का सिस्टम, ठीक है, हम उसके पीछे लगे हुए वोटिंग पे यस करते रहे। और पैसों के मामले में अगर आप कहें ना कोई गड़बड़ हुई है, मेरी एक्सेस नहीं है अकाउंट में, मैं आपको देख के नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ये बात छोटी है कि उसमें कोई ऐसा नहीं हुई। जब भी कोई फिनेंस की चीज हुई है ओके, तो वो ये हुआ है कि हमारा एक प्रोजेक्ट आया, प्रपोजल आया, हमने उसको चलाया, जितना पैसा आया वो सारा, अगर हमें डोनेशन इकट्ठे हमने किए हैं वो साकिब तस्नीम को किए हैं, अकाउंटों में डाले हैं, वहां से वो जितने पैसे की रिपोर्ट बन के आई है वो साकिब तस्नीम मोस्टली बनाता था, क्योंकि वो कहता था कैशियर्स को कि आप लोग जो उनसे, आप लोग कैशियर का रोल ले लो, मैं साथ आपके पूरी हेल्प करूंगा। जब वो बन के आते थे हमारा ब्लाइंडली ट्रस्ट था, अच्छा जी इतने पैसे आए ये हमने भेजने हैं, हम लोग गुक हैंड किया करते थे और वो जाया करते थे। दायरा छोटा होता गया क्योंकि जो लोग सवाल उठाना शुरू हुए ना, उनको इतना कुछ झिझ कर दिया गया कि एंड में वो लोग दिल लगा के काम नहीं किया करते थे।
4: देखिए बात मेरा, चलें एक और सवाल इसमें से निकला है, बात ये है कि जब आप लोगों ने वोटिंग के थ्रू ही हर चीज को ओके किया है और आप लोगों को अकाउंट की एक्सेस ही नहीं है, तो अगर मेरे अकेले के पास अकाउंट की एक्सेस है और मैं जो है आपको ये बताता हूँ कि जी फर्ज करें 1,00,000 करोड़ आया है और शायद इससे ज्यादा हो या कम होगा, मगर मैंने कागजों में 1,00,000 की आपको रिपोर्ट दे दी और पता ही नहीं है कि कितने जो है वो इसके ऊपर पैसे आए हैं, तो आप लोगों ने ब्लाइंडली उसके ऊपर साइन कर दिए, तो फिर तो जब एक बंदे के पास रिपोर्ट
3: की, अली भाई साइन की बात नहीं है, साइन की बात नहीं है, एक बंदा बता रहा है हमारे पास 1,00,000 करोड़ आया, क्योंकि कुछ चीजों का तो हमें साथ साथ पता होता था, जैसे डोनर्स, स्पॉन्सर, टिकट्स की सेल, ये तो हमें सारी बात है, रिपोर्ट हम दिया करते थे, इन चीजों का हमें पता होता था। अब वो जो बड़ा डिब्बा लेके हम घूम रहे होते थे, हमें तो नहीं पता कि उसमें 10,000 है या 50,000 है, ठीक है, तो चैरिटी का जो बेसिकली काम होता है वो एक ट्रस्ट पे होता है। आप ये नहीं कह सकते कि चैरिटी का काम, क्योंकि देखे मुझे कोई 10,000 रुपया दे गया, ठीक है, 10,000 करोड़ दे गया, तो साकिब तस्नीम को तो नहीं पता कि वो मुझे 12 दे के गया या 10 दे के गया, ये तो चैरिटी का काम तो है ही, ट्रस्ट पे है, जो देता है उसका भी ट्रस्ट होता है, जो लेता है उसका भी ट्रस्ट होता है, जो आगे से भेजने वाले हैं उन पे भी ट्रस्ट होता है, ٹرسٹ کے بغیر تو چیئرٹی چل ہی نہیں سکتی علی بھائی.
4: بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں دیکھیں ہمارا اس میں کوئی اللہ معاف کرے
3: جی, میں آپ کو ایک چیز کمپلیٹ کرنا چاہ رہی ہوں. یہ جب فیصلے ہوتے تھے نا علی بھائی, تو جو جو لوگوں کو اس نے زج کرنا شروع کیا اور لوگ چھوڑ کے بیک آف, آج لوگ جو کچھ مرضی کے, ہم 18 سے جب ٹیم رہ گئے نا 5 یا 6 کی, جب لاسٹ ہمارے 3-4 لوگ نکلے نا, اس دن مجھے یاد ہے کہ میں نے بڑے کلیئر الفاظ میں ان کو کہا تھا کہ ایسا مت کریں, یہ آرگنائزیشن ڈوب جائے گی. وہ نہیں کام کرتے ہیں لیکن کم از کم میٹنگز میں آتے ہیں, کرتے ہیں. آپ لوگ خدا رہا یہ بندوں کو مت نکالیں. انہوں نے کہا میں تو نہیں نکال رہا ہوں, وہ خود ریزائن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ان کا تھا کہ اس کو بالکل چھوٹا کرنے کا. کنفلکٹ پتہ ہے کہاں سے سٹارٹ ہوا کنفلکٹ علی بھائی؟ آج اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شہریار خان افریدی 2019 میں آیا, آئی تھنک. میں اس ٹائم پہ بیچ میں شامل نہیں اس ایونٹ میں ہو سکی تھی, میری مدر بیمار ہو گئی تھی. مارچ میں ہماری میٹنگ ہوئی ہے یا فروری میں, 2020 کی یہ بات ہے, ٹھیک ہے. اس دن میری ہوئی ہے تو میں نے وہاں پہ گئے, ہم بات کر رہے تھے, تو بچوں کا رمضان کا وہ شروع ہو چکا تھا کہ بچوں نے ینگسٹر نے سٹارٹ کرنا ہے. تو وہاں پہ میں نے ان کو کہا کہ ثاقب بھائی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ بچوں کی ایک ٹیم کو آپ کہتے ہیں اس ٹیم نے ہم کو آگے لیڈ کرنا ہے. یہ کنفلکٹ کا پہلا وہ میں آپ کو بیج بتا رہی ہوں, آپ مجھے بتا سکتے ہیں, کیونکہ میں ہمیشہ سے بہت ایچ ایچ میں بھی اس چیز کے لیے رہی ہوں اور سب لوگ مجھے کہتے ہیں میں وہ بہت بلنٹ ہوں, میں منہ پہ بول دیتی ہوں جو کچھ میں نے. اور اس بات کو ثاقب بھائی کبھی بہت اپریشیٹ کیا کرتے تھے, لیکن جو ان پہ سوال اٹھنا شروع ہوئے تو انہوں نے وہ کر دیا. اس سے پہلے نائلا سے میں رستے میں جاتے ہوئے بات کر رہی تھی, نائلا یہ میرا ایشو ہے, اس نے کہا اگر تو بات کرے گی نا تو سمجھ لے ثاقب تیرے خلاف ہے. میں نے کہا ہو جائیں لیکن بات تو میں کروں گی. بات یہ ہوئی کہ میں نے کہا کہ آپ بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ بچے آگے لے کے اس کو بڑھیں گے ایچ ایچ کو, آپ نے بچوں کو یہ چیز بھی نہیں سکھائی کہ انہوں نے سوریا, فلسطین اور یمن, افغانستان, یہ سارے ملکوں کو انہوں نے رکھا ہے غمتین مدے میں. پاکستان کہاں ہے؟ کیا ہمارے ملک میں بھوک نہیں ہے؟ تو اس نے جب میں نے یہ سوال پوچھا تو وہاں پہ ایک بحث چھڑ گئی, آپ اتنی کیوں ہیں کیا نام ہے افغانستان کے خلاف. میں نے کہا بھائی جان میں افغانستان کسی اور کے لیے خلاف نہیں ہوں, میرا آپ سے سوال ہے کہ پاکستان کو آپ کیوں بھولے؟ اگر آپ بچوں کو نہیں سکھائیں گے کہ پاکستان کو, تو ہم تو بچوں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے ہیں یہ چیز, کیونکہ آپ نے بچوں کو بتانا ہے. وہ ہمیشہ سے ان کا عرب ممالک کی طرف ہو گیا ہے, آپ ان کو بتائیں کہ کشمیر کو بھی اس کیا نام ہے فلسطین جتنی ضرورت ہے. یہاں پہ ایک بات کر کے میں سمجھی کہ میں نے اپنے دل کی بات کر دی اور میں گھر آ گئی, لیکن وہ گرج بھائی کے دل سے نہیں گئی. ثاقب تسنیم نے وہ ایسی گرج باندھی کہ اس کے بعد ہر چیز پہ جب بھی میں کوئی بات کہتی تھی نا وہ مجھے ایک دم سٹاپ لگاتے تھے. اس کے بعد دوسری میری ان سے بحث ہوئی یہ رحمہ کے پیکج پہ 500 روپے پہ, تیسری میری ان سے رمضان کے اندر ہی بحث ہوئی کہ انہوں نے پہلے غمتین مدے کو کیا آن لائن, اس کے بعد انہوں نے غمتین مدے جب نمبر 2 کیا تو مجھے کسی نے فون کر کے پوچھا یہ نمبر 2 سٹارٹ ہو رہا ہے, تو میں نے بیچ میں گروپ میں لکھا سی سی میں کہ ہم کیسی سی سی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کہ اس کے بعد یہ فروری یا مارچ کی بات ہے, فروری اور مارچ کے بعد ثاقب تسنیم نے ہر چیز کا فیصلہ خود کرنا شروع کر دیا. اس نے کہا واٹر پروجیکٹس, میں نے کہا کدھر سے واٹر پروجیکٹس آ گئے اور کس نے کہا کہ آپ نے فلاں ادارے کو اسی ادارے کو اس ادارے پہ ایکسٹریم کا رخ جانا ہے ثاقب تسنیم کا, اور مجھے نہیں پتا ہے. حالانکہ اس ادارے کی وجہ سے ہمارے پاکستان میں بھی ثاقب تسنیم کو مختلف سیاسی اور کیا نام ہے سماجی شخصیات نے اس کو وارن کیا تھا کہ یہ ادارہ ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا پتہ نہیں کیا اس ادارے میں رک جانا ہے. میں نے کہا یہ واٹر پروجیکٹس کے پیسے کب آئے اور آپ نے کب فیصلہ کیا کہ رحمہ کو دینا؟ نہیں, یہ نائلہ نے بات کی تھی. اور وہاں پہ ثاقب کا طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا, اس نے اتنی بری لینگویج شروع کر دی. اور پھر ظاہری بات ہے ہم سب آگے کہ آپ فیصلے کر رہے ہیں اور اپنے بنا پہ کر. یہ مارچ کے بعد جب میرے افغانستان کی بات ہوئی اور بچوں کی بات ہوئی نا, اس کے بعد علی بھائی یہ ایکسکلیٹ کرتا رہا. اور یہ اتنی بڑی سٹوری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ کے میرے خیال میں اگلے مہینے کے پورے چینل وہ کہنا میں بک ہیں اس چیز کے لیے. لیکن چھوٹی چھوٹی چھوٹی چیزیں,
4: اور ہماری دیکھیں یہی خواہش ہے اور پوری کمیونٹی کی بھی یہی خواہش ہے کہ یہ معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوں. اگین یعنی کہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ اس میں ثاقب صاحب کو پورا ٹائم نہیں دیا گیا ہے, ان سے آپ کی کال سے پہلے بھی رابطہ کیا گیا.
3: میں ابھی
4: कह रही हूँ, वही होगा,
3: ये
4: मगर
3: स्कूल का
4: दबंग
3: जी।
4: जिस दबंग तरीके से आप लोग यानी कि हर चीजों को हैंडल कर रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि आपके ऊपर पुलिस के भी चार्जेस हैं। तो बल्कि अभी मैंने मुझे किसी ने भेजा भी था, मीडिया के थ्रू ये चीजें पता चलती हैं कि फेसबुक के ऊपर शायद उन्होंने अपनी फेसबुक के ऊपर कोई मैसेज भी लिखा था कि शायद आप उनके
3: जी
4: काम के
3: ट्रैक
4: हवाले
3: किया था
4: से
3: हमें
4: जो है कि
3: जी।
4: लोग जो है वो एक प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। तो अगेन हमने उन्हें पूरा टाइम दिया है, तो जो लोग उन्होंने बल्कि शायद आप लोगों की तरफ पॉइंट करके भी कह के आप लोग अपने मैसेजेस को डिलीट करें, वरना वो पुलिस को इस सिलसिले में रब्ता करेंगे। तो क्या आप लोगों ने अपने मैसेजेस डिलीट कर दिए हैं, या कोई प्लान है आपका, या आप किस तरह इस चीज को देखेंगे जो उन्होंने आपके लिए मैसेज लिखा है?
3: भाईजान मैंने तो उनको पैगाम भेजा था कि भाईजान आप फ्राइडे का इंतजार ना करें, आप अभी करें। मैं आई एम सो रेडी। मैं मेरे पे आगे अगर एचएच की वजह से पुलिस चार्जेस लग गए हैं, उनको क्या लगता है? वो मुझे असल में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं पिछले 5 साल से। पुलिस क्या कि मुझे, उनको पता है कि मुझे कोई चीज डरा नहीं सकती। अगर डरा सकती तो इतना हमने इस जगह पे नहीं बैठा। हाँ, कुछ लोगों को उन्होंने प्रेशराइज किया है, वो लोगों ने डिलीट किए हैं मैसेज, और फिर दोबारा आके उन्होंने लिखा भी है कि जी हमें अपने फ्रेंड्स के थ्रू क्या नाम है, ये डिलीट करवाए गए हैं। तो
4: इस जिस माशरे में हम लोग आप लोग रहते हैं, क्या इस माशरे में इनका कानून, डेनमार्क का कानून इतनी भी आजादी नहीं देता कि आप अपनी पॉइंट ऑफ ओपिनियन या आपका ओपिनियन उसे आप शेयर कर सकें, या आप फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसके उसको मलहूजे खाते रखते हुए आप किसी भी सोशल मीडिया के फेसबुक के ऊपर कॉमेंट या कुछ भी आप या किसी के ऊपर आप कॉमेंट कर सकें? क्या इनका कानून इतनी भी इजाजत नहीं देता जिस तरह का मैसेज वहां पे शेयर किया गया है?
3: जी अली भाई, देखिए कानून तो बिल्कुल इजाजत देते हैं, हमें भी पता है, आप भी यहाँ के शहरी हैं, हम भी यहाँ के शहरी हैं। यहाँ पे जितनी आजादी है अपनी बात कहने की, आई थिंक कहीं भी नहीं है। बात यह है कि सबसे बड़ा सबूत यही है कि आप देखें कि वो हमें थ्रेट कर रहे हैं एचएच के अपने पेज पे कि एचएच ये ना करे। हमने उनको सोचना चाहिए, इतने समझदार पढ़े लिखे आदमी है, हमने एचएच के पेज के ऊपर ये इंफॉर्मेशन दी, वो भी इस वजह से कि लोग हमें कह रहे थे कि आप इवेंट क्यों नहीं कर रहे हैं रमजान शरीफ में। हमें बहुत सारे मैसेजेस इनबॉक्स में आ रहे थे, लोग फोने भी करते थे। अब ये जरूरी हो गया था कि हम अपने पेज के ऊपर ये इंफॉर्मेशन डालें। तो आप देखें कि जब वो इंफॉर्मेशन डाली गई और उसमें कुछ लोगों ने जब ये लिखा कि ये अपने कमेंट्स दिए

0: आपने इतना गंद किया, उसको वो साफ करने की कोशिश में है, वरना हम भी आराम से रिजाइन दे के बैठ जाएं। मगर वो जो 1.2 है जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है ना, मैं हैरान हूँ साकिब तस्नीम कैसे सो जाता है कि उसको पता है कि उसके दौर में ये सारा कुछ खराब काम हुआ है, तो वो सो जाता है और कम्युनिटी को कह रहा है कि आओ दोबारा मुझे ये डोनेशन दो। मतलब इतना बेवकूफ कैसे बना सकता है वो किसी को, कि जिसका सवाल कम्युनिटी उनसे नहीं करे कि पहले आप 1.2 का तो हमें जवाब दें, आपको क्या इतनी जल्दी थी कि आज आप डीएमएड की बिसाखी लेके दोबारा उन इवेंटों पे खड़े हो रहे हैं और आप एचएच के सारे प्रोजेक्ट चुरा के,
1: सारे प्रोजेक्ट्स अली भाई,
0: खजूर का प्रोजेक्ट एचएच का था, ये चुरा के इन्होंने हमारा डेटा चोरी किया, इन्होंने हमारी मेंबरशिप चोरी की क्योंकि एसएससी इनके पास थी, तो क्या ये चार्जेस कम है इनके ऊपर? आप खुद सोचिए इन चीजों को कि कम्युनिटी को फिर उनकी आंखों में आप वो झोंक रहे हैं कि जी मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ सेल्फ फेम के लिए। अगर आपके दिल में इतनी ही अल्लाह की मोहब्बत थी और एचएच का आपको काम इतना ही पसंद था, तो आप पहले एचएच को आरे लगाते, उसके मामला सही करते, फिर बेशक आप अपनी फेम के लिए एक नई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करते। तो ये सवाल कम्युनिटी का भी बनता है कि उनसे पूछे कि उनको नींद कैसे आती है, वो 1.2 लोगों ने जो पैसा दिया वो उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं कि आप वो पैसे के जवाब दे हैं, हम नहीं है वो
2: है। डेफिनेटली जी, ये मामलात अगर उनसे मंसूब हैं तो उन्हें इस चीज की पूरी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, क्योंकि फेसबुक के ऊपर या और सोशल मीडिया के ऊपर तो क्लैरिफिकेशन वो दे के लोगों को मुतमइन कर लेंगे, मगर जो निज़ाम इंसाफ है जिसमें आप भी आप लोग जिसको फेस कर रहे हैं, उसके लिए तो बाकायदा एक एक चीज, एक एक पाई जो आप लोगों के अकाउंट में आई और कितनी गई, तो वो तो आपने उनको देनी होगी, तो आप क्लियर होंगे।
1: मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि आप जितने भी सामीन सुन रहे हैं और आप लोग जहां तक ये कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि हम लोग इस चीज में अगर पिस रहे हैं तो किस चीज के लिए पिस रहे हैं? क्या वो 1.2 मिलियन मेरी जेब में जाना है या नायला की जेब में जाना है, या कि ये अल्लाह की रजा के लिए है? हमारा कोई ईगो, हम अपने ईगो को फीड नहीं करते हैं। मेरा अपना ये पर्सनल ओपिनियन है, एचएच से हटके साकिब तस्नीम एक बहुत ईगो पसंद बंदा है, वो अपने ईगो को करता है, क्या नाम है, फीड कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि क्योंकि आप जब किसी इंसान के साथ 5 साल गुजारते हो, आपको उसकी खूबियों का भी पता होता है, आपको उसकी खामियों का भी पता होता है, और मेरे लिए ये चीज आज बहुत क्लियर है कि ये इंसान अल्लाह के लिए काम नहीं कर रहा, ये इंसान अपने ईगो को फीड करता है।
2: चले, हमारी यही दुआ है अगेन, क्योंकि अभी आपने बताया कि साकिब साहब फिर कोई अपना कर रहे हैं, जो आज के दिन में हमारी जो है वो इस सिलसिले में नेक तमन्नाएं हर किसी के साथ हैं, क्योंकि यहाँ पे बीसियों तीसियों ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो चैरिटी का काम करती हैं पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आती है देने वाले के ऊपर कि वो खुद पहले तसल्ली करे कि वो जिसको पैसे दे रहे हैं किसी एक शख्स को या ऑर्गेनाइजेशन को या किसी इदारे को, क्या वो काबिल एतमाद है, यानी आपका पैसा सही मुस्तहिक लोगों तक पहुंचता है या नहीं, ये लोगों को देखना चाहिए। हमारे साथ क्योंकि कुछ और लोग भी शामिल होना चाह रहे थे इस कॉल में, इस ग्रुप में, मगर टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो शामिल नहीं हो सके, हो सकता है बाद में रब्ता हो तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तो इसके अलावा अभी आज के लिए आप कोई कम्युनिटी को मैसेज देना चाहेंगी अपनी तंजीम के हवाले से?
3: तो मैं एक बात करना चाहता हूँ अली।
2: जी जी
3: अली, देखें जिस तरह सबा ने बड़ी तफसील से बताया, नायला ने भी बताया कि ये जो 500 रुपया एक पैकेट पे लगता था, उस पैकेट में होता क्या था जिस पैकेट के लिए 500 रुपया दिया जाता है? दूसरा ये जो वो जो साकिब तस्नीम साहब जो कहते थे नहीं इसी तरीके से भेज रहे हैं हमने पैसे, वो कौन सा अदारा था जिसको 500 मिलते थे, वो कंपनी कौन सी? दूसरा ये जो आप कह रहे हैं कि वाटर पंप, ये वाटर पंप कौन सी कंपनी लगाती थी और एक वाटर पंप कितने का लगता था?
1: भाई क्या नाम है, इस चीज के बारे में मुझे कितने का लगता है, मेरे हाल में 5 to 6,000, हमारे पास 1,00,000 करोड़ उस प्रोजेक्ट का पड़ा हुआ है जो वाटर पंप का है, ठीक है, और वो वही कंपनी है जो के जिसपे साकिब तस्नीम की बहुत मेहरबान है, उसका नाम रहमा इस्लामिक रिफंड आई थिंक। और क्या नाम है, उसका ये मसला है कि वो जब साकिब तस्नीम पाकिस्तान अपने टूर पे गया था इससे पहले, तो ये बहुत लोगों ने उस पर वाजा किया था कि ये चीज नहीं है। उसके बाद हमारी कुछ वहां पे ऐसी शख्सियात थी जिनको साकिब तस्नीम ने स्पेशल रिक्वेस्ट की है, वो मैसेज भी मेरे पास है जिसमें उसने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप प्लीज ये रकम

0: का टैक्स के जो इश्यू हैं आप उनको किसी तरीके हेल्प कर सकते हैं क्लियर करने में? मुझे समझ नहीं आती साकिब तस्नीम का ऐसा क्या, क्योंकि हमारे लिए तो जितने भी इदारे होते हैं वो काम करने वाले होते हैं, हमारे लिए तो इस चीज का, और पाकिस्तान में एनजीओ का सिस्टम कुछ और है। जो आप बात कर रहे हैं ना कि उस पैकेट में क्या था, उस पैकेट में यही जो जरूरी चीजें होती हैं, दाल, घी, रूह अफजा, खजूरें, चीनी, चावल, और वो कह रहे थे कि जी हम आटा नहीं दे सकते हैं क्योंकि आटा बहुत भारी होता है, तो हम ऐसे करेंगे उनको 1200 रुपया दे दिया करेंगे। उस बात पे भी मेरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि आपने 500 रुपया लेना, तो आपसे 12 किलो मतलब 20 किलो आटा नहीं आप पहुंचा सकते उठा के, आपने लेने किस चीज के पैसे हैं? क्योंकि हमारा शुरू से था कि कैश किसी के हाथ में नहीं देना क्योंकि कैश मिसयूज हो सकता है। तो इस वजह से ये भी कुछ बातें थी कि जिसके बारे में था हमारे कंसर्न थे। वाटर प्रोजेक्ट्स का जो उनसे जारी बात है, मैंने आपको जैसे कि बताया, मैं इतना डीपली अभी अकाउंट के अंदर जा ही नहीं सकी क्योंकि ये 5 साल का वो था कि मुझे पता चल सके। अभी भी क्या नाम है, पुलिस को भी जैसे मैंने बताया कि आप अपने डाटा से चेक कर सकते हैं कि तब 2 महीने पहले मुझे एक्सेस मिली थी बॉक्स की। सोचिए मैं जुलाई 2020 में चेयरमैनशिप मैंने ली है, और अब भी आके आप सोचे अगर 3 महीने पहले जनवरी में, तकरीबन 8 महीने बाद मुझे ई बॉक्स के अंदर एक्सेस मिली है। सोचे आप, जब भी उसको रिक्वेस्ट भेजनी, उसने आगे से कैशियर को वो बना देता था, क्या नाम है, कैशियर से थोड़ी बहुत तब उसकी बातचीत थी, उसको वो बना देता था मिडलमैन के तौर पे, मतलब किसी भी चीज का एडमिन बनना है, कुछ भी करना है, उसने उसको बना देना है, लेकिन मुझे नहीं वो बनाता था।
1: ये जो आप वाटर प्रोजेक्ट की बात करें ना, ये भी उसी कंपनी ने लगाने थे और उन्हीं के साथ इनका MOU जो है वो साइन हुआ हुआ था, और हम लोग इस बात पे परेशान थे कि साकिब तस्नीम तो किसी को 1 मिनट की फेवर देने वाला नहीं है, हम जितना उनको जानते हैं, तो ये उसके ऊपर इतना मेहरबान क्यों है जबकि सब लोग उसको कह रहे हैं। उस वक्त उनके पास नहीं थी वो सर्टिफिकेट की जिसकी वजह से वो बाहर का पैसा ले सके, तो हम लोग इस बात के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई। हम लोग परेशान थे कि ये तो इस चीज को पहले कहते हैं कि ये हमारे लिए हर्डल है क्योंकि हमारा पैसा अगर पाकिस्तान गया वो फ्रीज हो जाना है। तो बहरहाल ये एक मामला तो नहीं है ना, कितने मामले, अफगानिस्तान के लिए पैसे जमा करना, अपने बच्चों को ये ना बताना, ये इस कंपनी के साथ काम करना, अपना मतलब ईगो, ईगो इतनी कि मार्च में उन्होंने हमें लिखा कि जब तक मैं प्रेसिडेंट हूं इस कंपनी के साथ ही काम होगा, ये हमारे पास रिटर्न है, इस कंपनी के अलावा कोई भी चीज काबिल कबूल नहीं होगी, यानी उन्होंने खुद फैसला कर लिया था।
0: उसके बाद मार्च के बाद ना, मार्च 2020 से जुलाई जब तक मैं नहीं बनी हूं, उन्होंने हर चीज में, वो कहते हैं ना कि मैं आपको शो करूंगा कि मैं हूं, मेरा यहाँ पे वो चलता है, मतलब उन्होंने फिर उसके बाद ना इस चीज को बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिया।
1: बहरहाल देखें, अब हम तो खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह हक के लिए खड़े रहेंगे। ये अमानत थी, अमानत लोगों की है जो हमारे पास है, हम नहीं भाग सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको फॉलो करें और आप लोगों को भी हम अपडेट रखें इस चीज से कि अब क्या हो रहा है और अब मामलात कहां तक पहुंचे हैं।
2: सबा और नायला, मेरा दोनों से सवाल है कि साकिब तस्नीम तो बड़ा जेंटलमैन और बड़ा हार्ड वर्कर, और मतलब पेपर वर्क वो बहुत अच्छा करते थे, खासकर वो ड्राफ्टिंग जो मिनट्स लेते हैं वो बहुत अच्छा लेते हैं। साकिब की ऐसी तो रेपुटेशन नहीं थी जिस तरह की अभी सामने नजर आ रही है। मैंने साकिब को पिछले 3-4 दिनों में फोन भी किया है, मैं अभी भी साथ भी साकिब को मैंने फोन किया, कॉल तो जा रही है लेकिन वो अटेंड नहीं कर रहे। अगर अब भी जो साकिब को एक तीसरा चांस है, अगर अब भी वो आपके साथ डिबेट करना चाहें तो आप उनको चांस देने के लिए तैयार हैं?
1: मोस्ट वेलकम। ये कोई हमारा पर्सनल काम नहीं है, ये एक एनजीओ का और ये एक कम्युनिटी की अमानत है जिसमें हम दोनों जवाब दे हैं, और हम दोनों को अपनी बात कहनी चाहिए। अकेले अकेले बात कहने का आई डोंट थिंक सो कि वो इंसाफ रहता है, तो हम तो मोस्ट वेलकम कम्युनिटी को कहेंगे वो आके बात करें हमारे साथ।
0: मैं भी इसी चीज को कहूंगी कि मेरा हमेशा से ये रहा है कि वो अपनी, उनकी अपनी कोई, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि दोनों साइड की आपको सुननी चाहिए, मेरा खुला उनको इस चीज के लिए दावत है, वो आए हमारे साथ बैठें, डिबेट करें, हमारी जो पेपर्स हैं वहां पे हमें बताएं कि जी ये पेपर्स गलत नहीं थे, मैंने ये पेपर्स भेजे, मुझे ये तब से पता था या नहीं पता था, वो हमें बताएं कि उन्होंने किस फोरम पे हमें कब इतला दी थी, और उनके पास भी जारी बात है इस चीज का सबूत होगा अगर उन्होंने किया होगा तो मेरा उनसे खुली इस चीज के लिए, क्योंकि मुझे जहां तक है कि मेरा अपना पेपर वर्क एज अ चेयरपर्सन बिल्कुल मुकम्मल है। मैंने कब उनको ईमेल्स भेजी, कब मैंने उनको रिक्वेस्ट की, कब मैंने उनको पर्सनल मैसेज किए, कब मैंने सवाल उठाए, कब उनके कैसे जवाब आए। मेरे ख्याल में इस चीज में कोई भी नहीं है कि वो 1.2 मिलियन पुलिची एनमिल से हमारे पास है, बैंक के बंद होने का हमारे पास है। मैंने बैंक को पिछले दिनों मैसेज लिखा कि मुझे बिल्कुल ताजा स्टेटस चाहिए कि हमारे पास कितने पैसे हैं, और बैंक ने वही लिखा 1.2 मिलियन और 1700 समथिंग, इवन ओरे भी लिखे। वो मैंने इसलिए लिया कि मेरे पास एक नया स्टेटस हो, ताकि अगर मुझे कल को किसी को दिखाना पड़े तो मुझे पता हो कि मैंने बैंक को मेल करके ये किया है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने किस किस जगह पे किस किस बैंक में अप्लाई किया, उनके रिप्लाइज, उनकी चीजें, साकिब तस्नीम के कब मेरे साथ आए, कब कब मैंने साइन करवाए, किस चीज के लिए करवाए। इनका दोस्त इवन जो कि हमारी फोइनिंग में क्या नाम है एचएच में साकिब तस्नीम, मेरी पहली मीटिंग एक सिर्फ मीटिंग हुई थी, उसके बाद साकिब तस्नीम ने रिजाइन कर दिया था। उसमें साकिब तस्नीम, मैंने आपको बताया, तीन नाम लेके आए थे, एक अपने दोस्त का, एक अपने बेटे का, एक एचएच की वो क्या नाम है जो कि अब इनकी है यंगस्टर का, और एक एक्टिव मेंबर का, चार लोगों का। बेटे का उन्होंने निकाल लिया क्योंकि मेरा उस पे ये था कि आपके फैमिली के बहुत लोग हो चुके हैं एचएच में, और ये एक जो हेल्थी होती है ना ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए अच्छा नहीं होता है। उन्होंने वो ये बाकी तीन नाम थे इनके दोस्त का, एक यंगस्टर का जो कि अब इनकी यंगस्टर टीम में है, और एक क्या नाम है एक्टिव मेंबर का जो कि हमारी एक्टिव थी, और इनमें से इनके दोस्त को सिलेक्ट किया गया मेजॉरिटी के वोट्स के साथ। और इनके दोस्त ने जब छोड़ा है मेरी क्या नाम है फोइनिंग, बहुत अच्छे भाई हैं, उन्होंने एचएच के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम की किल्लत की वजह से सॉरी बहना मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, फाइन भाई। और उन्होंने कहा एचएच को कभी भी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं करूंगा। लेकिन अब आप ये उनकी सितम जरीफी देखें कि आज वही लोग उनके क्या नाम है सीसी में बैठे हुए हैं जो उन्होंने नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। उसके अलावा आप ये देखें कि हमारे ही प्रोजेक्ट्स वो लोग कर रहे हैं, मतलब कम ऑन। आपने ये तो फिर ईगो को, अगर आप एचएच को बचाना चाहते तो यही ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी चल सकती थी। इवन जिस दिन साकिब तस्नीम ने रिजाइन दिया है, उस दिन हम एक बहुत बड़ी मीटिंग में बैठे हुए थे एक्टिव मेंबर्स की, और वहां पे मैंने कहा था साकिब भाई, तब भाई होते थे साकिब भाई, क्योंकि उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट खुद लूज कर दी। मैंने कहा आप आए, आप बैठ के हमारे साथ बात करें, आप जैसे कहेंगे हम इसको इकट्ठे लेके चलेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है मेरे प्रेसिडेंटशिप, क्योंकि मैं तो बनना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये चीज अच्छे तरीके से हो, लेकिन उनको था कि वो जैसे एक बंदा अकड़ में नहीं रिजाइन देता है, या हो सकता है कि उनको वो सारी डिटेल्स पता हो कि पुलिची एनमिल हो चुकी है, बैंक अकाउंट का मसला हो रहा है। बैंक अकाउंट तब बंद हो चुका था जब उन्होंने रिजाइन दिया।
1: ये दुखी हमें इस बात का कि उन्होंने बैंक अकाउंट बंद होने के बाद क्यों
0: तीन दिन बाद उनका रिजाइन
3: है। अच्छा चलें, ऐसा है कि अभी हमारे साथ अंकल मुनीर, मियां मुनीर साहब भी शामिल हैं, मगर मुझे कॉल स्विच करनी पड़ेगी, तो हो सकता है थोड़ी सी आवाज उतनी क्लियर ना हो जितनी मेरी आपको आ रही है। वो कमेंट करना चाह रहे हैं इसके ऊपर, तो फिर वो आपसे शायद कोई सवाल भी पूछें। तो जी अंकल, अभी आप ऑनलाइन है।
4: जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अली, आपको, अली को और नायना बेटी और सब आपको।
0: वालेकुम अस्सलाम।
4: मैं पिछले हफ्ते से ये सुन रहा हूँ, और सबसे पहले नायला और सभा, सच्ची बात यह है कि मैं इसका गवाह हूँ कि आप लोगों ने मिलकर एक बड़े अच्छे, बहुत बड़े काज के लिए बड़ी एफर्ट की। आपने अपनी फैमिलीज को, अपने बच्चों को साइड पर करके, मैं भी आपको पता थोड़ा बहुत हिस्सा डालता रहा हूँ आपके एचएच में, और आप, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो आप अब तक आप लोग करते रहे। अब मसला ये है कि ये सारी चीजें जिस तरह निकली हैं, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने पिछले हफ्ते से रब्ता किया है। पिछले दिनों मेरे ही उधर वर्कशॉप में हमको 20-22 लोग बैठे थे, तो आपके इस हवाले से काफी तफसील से ख्वाजा आसफ साहब ने भी कुछ बातें बताई थी। अभी मैं बात लंबी नहीं करना चाहता, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसलिए कि ऐसे काजज जो है उनको हमने कंटिन्यू रखना है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ अली इन बच्चियों को, इसमें मेरे फैमिली मेंबर भी शामिल है, इनको पता है, मेरी छोटी बहन इनके साथ है, चाचा साहब, इन्होंने इतना वक्त दिया है और एक अच्छे काज के लिए इन्होंने इतना यानी कि एफर्ट करके अपने उन जो नीडी लोग हैं पाकिस्तान के अंदर और दुनिया में, उनके लिए ये लोग कुछ करना चाहते थे। अनफॉर्चुनेट गलत सोच की वजह से غلط ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اور غلط یہاں کے قانون اور قاعدے کو نہ سمجھ کے یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ نقصان ہوا ہے اور آگے بھی ہو سکتا ہے. کم سے کم ایسی چیزیں اگر کنٹینیو نہیں رہیں گی تو ہمارے بہن بھائیوں کا بہت نقصان ہوگا. اب صبا اور نائلہ بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں اور یہ سننے والے سنیں گے کہ میرا بھی تعلق یعنی کہ اس طرح ہے. ثاقب تسلیم کو میں نے دیکھا, جو بھی کوئی اچھا کام کرنا چاہے, راجہ غفور ہو, میں ہوں, پاکستان سوسائٹی ہو, ہم نے ہمیشہ پیچھے کھڑے ہو کر سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ہمیں بہت خامیاں ہو سکتی ہیں, لیکن میں یہاں یہ ضرور کہتا چاہوں گا کیونکہ یہ باتیں ابھی آپ نے کی ہیں, میں آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ جب سے میں نے آپ کو پتا کہ آپ کے ثاقب تسلیم پہلے یہ پی ٹی آئی میں آئے تھے آج سے کوئی 8-9 سال پہلے, وہاں جب یہ تھے اور وہ سال ڈیڑھ جو ہے وہ یعنی کہ میرے ہی آفس میں آپ, میرے خیال میں شاید آپ کو پتا ہو تھوڑی بہت ہی چیزیں ایسے رہیں کہ وہاں اٹھتے بیٹھتے تھے ہم میٹنگز میں, وہاں اس آدمی کا ایکو جو ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اس طرح تھا کہ وہ ایک, اور میں نہیں بات کرنا چاہتا کوئی لمبی چوڑی کسی سیاسی پارٹی میں, اس کاز کے اوپر ہی رہنا چاہتا ہوں, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس انسان نے وہاں پر اپنے سوچ اپنا طریقہ کار سے بہت ساری چیزوں کو کم سے کم یعنی کہ جن کا لنک پاکستان سے تھا, مراد سعید آیا وہ بےچارہ بڑا یا میں کیا کہوں کہ بڑا خراب ہو کر گیا اور ہماری طرف دیکھتا رہا, لیکن ہم مجبور تھے جیسے آپ مجبور رہی ہیں ان کے آگے. اب بیٹے بات یہ ہے جو میں نے آپ سے کرنی ہے, میں آپ کو ویسے بھی فون کر کے کرنا چاہتا تھا, تھوڑا سا رہا ہوں اپنے صحت کی وجہ سے مصروف رہا ہوں ان دنوں. اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ آن الگ کہتا ہوں, کس طرح کی سپورٹ آپ کو چاہیے. میں ٹیکسیشن کا سسٹم جو ہے الحمدللہ میں نے کچھ چیزیں تھوڑی سی اپنے ضرورت کے مطابق بھی جانتا ہوں. جس طرح کی سپورٹ آپ کو چاہیے میری ذاتی حیثیت میں, یہ ادارہ آپ کے پر آپ کی آواز آ رہی ہے اور پاکستان سوسائٹی کی طرف سے, جس طرح کی سپورٹ بھی آپ کو چاہیے, جو بھی آپ کے یعنی کہ ہم مدد کر سکتے ہیں اس اچھے کاز کو کنٹینیو رکھنے کے لیے اور آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور اس کام کو آگے, ہم نے دیکھیں یہ کام پتہ نہیں کہاں سے چلتا آ رہا, آج عبدل سعد ایدی اس دنیا میں نہیں ہے لیکن وہ ایک ادارہ چلتا آ رہا ہے. ہم دیکھتے تھے, میں بھی دیکھتا, یہ علی بھی میرے خیال میں اس میں ہم دیکھتے تھے کہ ایچ ایچ ایک بہت اچھی تنظیم بن گئی ہے. میں نے سبا لوگوں سے, آپ گواہ ہیں اس چیز کی, میں نے لوگوں کو, وہ فیملی آپ جانتی ہیں برانبی والی, میں نے ان لوگوں سے پیسے دے دے کر, میں آپ اماؤنٹ کہنے کا بتانے کا نہیں ہوں عادی نہیں ہوں, میں نے لوگوں سے پیسے دے دے کر آپ کے یہ ثاقب تسلیم بھائی ان کے ہاتھوں دیے اور وہ سارا, لیکن مجھے بہت افسوس ہوا پچھلے ہفتے سے کہ اتنی بڑی رقم جو ہے, ایک تو وہ شاید ضائع ہو جائے, ہم کوشش کریں گے ضائع نہ ہو, اور پھر ایسے کام کرنے والے لوگ اور اس میں یہ بچیاں جس میں ہم اتنے خوش تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ بچیاں اپنے, جیسے میں نے پہلے کہا, اپنے گھر کو اپنے بچوں کو چھوڑ کر تو یہ اس کاز میں کام کر رہی تھی, آج آپ بھی اتنی دس آ رہے ہیں, بلکہ آپ پر قانونی نقطۂ نظر سے یعنی کہ یہ بد اخلاقی ہے ثاقب تسلیم کی کہ وہ خود فیس نہیں کر رہے چیزوں کو, انہوں نے یہ چیز جو ہے کسی ٹیکنیکل طریقے سے آگے پھینک دی ہے کہ جو قسموں نو کھاؤ جو مرضی ہوئے میں سیف ہو جاؤں اور اپنی اس نے دوسرے نام پر شروع کر دی ہے. میں بس یہی کہنا چاہتا تھا علی, ایکچولی مجھے یہ بات کا احساس اس لیے ہوا ہے, میں بھی ایک چھوٹا موٹا سوشل ورکر ہوں, ہم نے بھی امانتیں جو ہے یہاں چاہے کشمیر جا کر دیں یا اور لوگوں کا جس طرح بھی ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں. میں اپیل کرتا ہوں اپنے تمام بہن بھائیوں سے اس شہر کے اندر, اس ملک کے اندر جو بھی ہمیں سن رہا, کہ ہمیں ایسے اداروں کو ایک تو سوچ کر چلنا ہے, دیکھ کر چلنا ہے, اور ایسی بچیاں جو میں سن رہا ہوں اور میں پہلے بھی جانتا تھا, میں ان کے درمیان رہا ہوں, ان کو پتا دونوں کو جتنا بھی ہے, کیونکہ یہ ہماری بیٹیاں, میں دونوں کے والدین کو جانتا ہوں, اللہ تعالیٰ جو یعنی کہ سبا کے والد اس دنیا میں نہیں ہے, نائلہ کی والدہ اس دنیا میں نہیں, میں ان سے پرسنلی کچھ چیزیں بھی جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے, انہیں ہمت دے, اور میری ویڈیو ہم آپ کے ساتھ ہے, یہ منیر
5: انکل آپ کی اس بات میں نا ہمارا جو موقف ہے اور وہ جو آپ کی اس بات نے جو سپورٹ آپ نے ہمیں کی نا یہ کبھی نہیں بھلائی جائے گی, کیونکہ جس ٹف ٹائم میں ہم اکیلی کھڑی ہیں اور ہم جو کر رہی ہیں
0: और जिसके लिए कर रही है वो भी आप जानते हैं, इसमें कोई पर्सनल इशू नहीं है। इसमें एचएच जो हमारी तंजीम 5 साल जिस पौधे को हम पानी पिलाती रही, और पहली वो लेडीज थी जो आगे आई और इस बंदे का हमने इमेज बनाया और वाकई इस बात सच है ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, और ये ऑर्गेनाइजेशन अब ऐसी जगह पे पहुंच चुकी थी कि मतलब सोचा भी नहीं जा सकता था। और हमने कोशिश भी की साल कि किसी तरीके इसको हम बचाएं, और अभी भी लगे हुए हैं। हमारा ये कम्युनिटी से जाहिर है हम वो जवाब दे हैं नहीं, वल्ला आलम अल्लाह को जवाब देगा। हम जवाब दे हैं, जितनी चीज की हम जवाब दें हम उतना जवाब जरूर देंगे और आपको अपडेट भी करते रहेंगे
4: इंशाल्लाह। बस मैं भी यहाँ बात को खत्म करना चाहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह विद इन डे टू आपसे रابطے में हूँ, अगर खुद करूंगा, और जो जिधर भी हमने टैक्सेशन का मामला हो, तंजीमी मामला, मैं कुछ समझता हूँ तालिब इल्म हूँ, लेकिन जो कुछ भी मिलकर हम कर सकते हैं अल्लाह ताला के फजल व करम से हम आपके साथ हैं। मुनीर अकेला नहीं, और भी लोग हैं, हमने ये आपस में सलाह की है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये सारा निजाम जो है जिसमें ये अल्लाह ताला के दीन की खिदमत है, पाकिस्तान की खिदमत है और उन लोगों की खिदमत है जो जो इसके जरूरतमंद है, ये सिलसिला हमने जारी रखना। अल्लाह ताला आपको खुश रखे।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया
2: सबा नायला, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये आप सबका एक नोबल काज है, इस नोबल काज के लिए देखें इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, कम्युनिटी का नुकसान होगा, अदारों में जब बात जाती है तो सब जो हमारी पर्सनैलिटी है सबकी पर्सनैलिटी डैमेज होगी, खासकर एज ए फॉरनर जो हमारी पर्सनैलिटी डैमेज होगी। मैंने साकिब साहब को फोन भी किया है, साकिब साहब को मैसेज भेजा है, उन्हें कहा आप अगले हफ्ते आना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा टाइम हाजिर है। साकिब एक बाज़ार तो जो नज़र हमें आते हैं वो एक जेंटलमैन है, डेफिनेट वो इसको फेस करेंगे, पढ़े लिखे हैं। आगे भी सबा मैंने आपको कहा है कि मैंने आपको अगले हफ्ते की हम दावत देते हैं और ऑन एयर जो है वो साकिब को भी दे रहे हैं, मैंने साकिब को लिख के भी मैसेज कर दिया है, उनको मैसेज जो है वो डिलीवर भी हो गया है, तो अगले लिए अगले इतवार को आप तैयार हैं?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, हम इस कॉज के लिए अपना टाइम अपना हर चीज देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये एक अमानत है और इस चीज को हमने सही लेके आगे चलना है। अगर हम इन रिश्तों में और रिलेशनशिप में फंस के ये सारी चीजें प्रेशराइज होके खत्म कर देंगे तो क्या हमारा इमेज और क्या जाएगा, जैसे कि आपने खुद कहा फॉरनर्स यहाँ पे ऐसे हैं।
2: चलिए अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करें।
3: जी बिल्कुल, एक मिनट है, बल्कि हम ये भी कर सकते हैं अंकल कि अगर साकिब साहब को ये लगता है कि वो अकेले नहीं आना चाहते, अपने पूरे पैनल डॉक्यूमेंटेशन के साथ आना चाहते हैं, तो हम जिस तरह आज ग्रुप कॉल कर रहे हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस या अगर स्टूडियोज में आके वो करना चाहें ताकि ये लोगों के पैसे हैं, इस मामले को बेहतर तरीके से हल किया जाए, इसमें किसी की कोई दिल आजारी या किसी की कोई वो आप कह लें कि वो हम किसी की शख्सियत को सबोताज नहीं करें, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इदारे जो हैं वो चलते रहना चाहिए और खास तौर पे इस नोबल कॉज में। तो हम एक दफा फिर आपका नायला भाभी और सबा आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आपने फिर टाइम निकाला, और अंकल मनीर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और इस नोबल कॉज में जो भी डिस्कशन है इसको सॉल्व करने के लिए अपनी जो है वो ऑफर सर्विस ऑफर की है, तो इंशाल्लाह हम लुक फॉरवर्ड करते हैं कि इसको हम बेहतर तरीके से हल करें। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का,
0: बहुत शुक्रिया आपका अली भाई, मियां मनीर साहब,
3: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
2: समाइन आपके साथ थे आपके अपने होस्ट अली जावेद और सबा नवाज थी हेल्पिंग कम्युनिटी की जो नई सदर हैं, और नायला वसीम थी जो कि नायब सदर हैं, मियां मनीर साहब थे जो कि एक सोशल वर्कर हैं। समाइन हमने कोशिश की कि जो भी मालूमात थी वो हमने आपके साथ शेयर की, अब फैसला आपने करना है, हम कोई पुलिस मैन नहीं है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना अपने सामाइन को। साकिब को मैंने पहले भी कहा है कि मैंने टेलीफोन भी किया है, मैंने बिलाल के थ्रू मैसेज भी जो है पहुंचाया, कोशिश की, बिलाल ने मुझे कहा कि मेरा रابطہ नहीं हो सका, मैंने खुद भी साकिब साहब को मैसेज लिखा है, साकिब साहब का एक नाम है एलपी कम्युनिटी में, ये जो 1.2 मिलियन डेनिश क्रोन पड़े हुए हैं ये लोगों की इमानत है, उन हकदारों तक उस इमानत को जो है वो पहुंचना चाहिए। बाकी जब पैसे जो हेल्पिंग कम्युनिटी के थे जिस तरह बेदर्दी से 500 करोड़ जो 500 रुपये जो है एक पैकेट पे अखराजात, इस तरह के अखराजात, किसी के पैसे को जो है वो बड़े एहतियात से खर्च करना चाहिए, इमानत जो होती है उस पर जो अपने पैसे से भी ज़्यादा उस पर जो एहतियात करनी चाहिए। साकिब आप एक पढ़े लिखे हैं, आपका जहन यहाँ डिवेल्प हुआ है, आपका एक नाम है, आप अपनी ईगो को छोड़ें, आपने अच्छी आपकी रेपुटेशन है, और आप इस मसले को जितना जल्दी हो सकता है इसको हल करने की कोशिश करेंगे। آپ ہمارے پاس آئیں, اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آئیں, اپنی پوری ٹیم کے ساتھ شامل ہوں. ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمارا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ ہم کوئی پارٹی ہیں یا کوئی فریق ہے, ہم دونوں کے لیے برابر ہیں. یہ ادارہ آپ کی آواز جو ہے, آپ سب کی آواز ہے, ہم آپ کے لیے برابر ہیں. ثاقب آپ یہاں ہمارے پاس آتے رہے, آپ نے ہمارے ساتھ بڑا کام کیا ہے, ہمارے دل ہمارے لیے آپ کے دل کے لیے ہماری بڑی عزت ہے, آپ کے لیے ہماری پوری ٹیم کی عزت ہے. لیکن یہ شاکیبل جب خبریں ملتی ہیں تو اچھا نہیں لگتا. اور آپ نے جو ہے, میں دوسرے لفظوں میں کہوں گا کہ کسی کو بھی کسی سسٹم میں جو ہے نا استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ کسی کا پیسہ ہے, اگر آپ کا ذاتی پیسہ ہے تو آپ کا رائٹ بنتا تھا. یہ جو پولیس کا کیس یا دوسرا تیسرا, میں نہیں سمجھتا کہ اداروں میں شکایتیں کرنا, اس طرح کی باتیں کرنا یا کسی چیز کو انوالو کرنا, یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا, جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا. آپ لوگ ساتھی تھے, صبا آپ کی ساتھی تھی, نائلہ آپ کی ساتھی تھی, وہ آپ کو بھائی کر کے جو ہے وہ بلا رہی ہیں, تو آپ لوگ اچھے طریقے سے بیٹھ کر ان معاملات کو حل کر سکتے تھے. اب جب آپ نے یہ تنظیم چھوڑ دی ہے تو آپ کا چاہیے تھا کہ آپ پیسہ بھی اسی تنظیم کو دیتے, اور آپ نے پولیس کے چکروں میں ساری چیزوں کو ڈال دیا. اب ریویزر کے پاس جو فیسیں ہوں گی, جو پیسے کو اخراجات ہوں گے, وہ بھی آپ کے ذمے یہ ساری چیزیں لگیں گی کہ آپ کی وجہ سے ہوا یا تنظیم کی وجہ سے ہوا. تو ثاقب آپ پڑھے لکھے لو, آپ اگلی دفعہ آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ کو ہم دوبارہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہمارے مہمان بنے. سمائی نے ہمارا کام تھا انفارمیشن دینا, جہاں تک ہم انفارمیشن دے سکتے ہیں, ہم کوئی پولیس مین نہیں ہیں, ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اگلے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
6: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
7: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

हमें क्यों सुझा दिया कि नंगा होना ज्यादा खूबसूरती है और जिस्म की नुमाइश को खूबसूरती बना दिया, सी थ्रू कपड़े पहनाना ज्यादा अकलमंद कहलाने का सबब समझाया, हालांकि ऐसा नहीं है। सारे जानवरों के लिबास अल्लाह ने खुद ही पहना दिए और वो बेचारे एक ही डिजाइन में रहते हुए दुनिया से चले जाते हैं, जबकि इंसान को एक लिबास नहीं दिया, उसको स्किन कलर दिया जिसके ऊपर हर खूबसूरत चीज नुमाया हो जाती। आप देखना, स्किन कलर का कारपेट हो तो उसके ऊपर फर्नीचर कितना निखरता है। तो इसी तरह आपको अल्लाह ने स्किन कलर का जिस्म दिया जिसके ऊपर खूबसूरत रंगों के लिबास, खूबसूरत कढ़ाइयों के लिबास आपके लिए हुस्न का सबब है। यही अगर आपकी स्किन ब्लू कलर की होती है तो आप कितने लिमिटेड कलर्स पहन सकते थे, क्योंकि ब्लू के ऊपर हर कलर फिर सूट नहीं करता। इसी तरह अगर आप ग्रीन होते, सोचे ना थोड़ा सा, तो क्या नजर आते। कितनी वसी चॉइस दी है अल्लाह ने आपको, हम शुक्र नहीं करते, शुक्र नहीं बजा लाते। और आपको मालूम है कि एक परिंदे पर तकरीबन 10,000 मुख्तलिफ किस्म के पर होते हैं। बास पर उड़ने के काम आते हैं, बास जिस्म के साथ होते हैं, उसकी शेप नुमाया करते हैं। इसी तरह फ्लफी होते हैं, नरम होते हैं, आरामदेह होते हैं। तो लिबास भी अगर आरामदेह हो, नरम हो, सिल्की हो, कंफर्टेबल हो, तो इसमें हरज नहीं, गुनाह की बात नहीं। हाँ, मर्दों के लिए सिल्क हराम करार दी गई, अगर उनके लिए हलाल होती तो शायद औरतों के हिस्से में बहुत थोड़ी आती। हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई नया कपड़ा पहनते तो उसका नाम लेकर फरमाते कि अल्लाह ने मुझे ये इनायत फरमाया, और फिर दुआ पढ़ते, اللهم لك الحمد انت كسوتنيه اسالك خير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له। اے اللہ, تیرے لیے ہی سب تعریف ہے جیسا کہ تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا, میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا, اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جس کے لیے یہ بنایا گیا۔ ایک اور دعا ہے, اللہم انی اسألک من خیره و خیر ما ہوا له و اعوذ بک من شره و شر ما ہوا له۔ ترجمہ ہے, اے اللہ, میں آپ سے اس کپڑے کی بھلائی کا اور یہ جس مقصد کے لیے ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں, جس مقصد کے لیے یہ کپڑا پہنا ہے اس کی بھی بھلائی کا سوال۔ اتنا خوبصورت ذہن موڑتا ہے نا اسلام اچھی طرح۔ کپڑا پہنو, किसी खास ओकेजन का कपड़ा पहन रहे हो, और हो सकता है आप कपड़े तो खूब पहन जाए और वो सारा ओकेजन बर्बाद हो जाए, तो उस ओकेजन के लिए भी दुआ मांगी जा रही है। साथ ही अगर आप यहां आने से पहले ये दुआ पढ़ें तो इस सारे काम की भलाई की दुआ हो जाएगी, और इसकी बुराई से, यानी इस लिबास की बुराई से और ये जिस मकसद के लिए है उसकी बुराई से तेरी पनाह चाहता हूं, तो महफूज भी रहेंगे। हज़रत उमर फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नए कपड़े पहनते हुए ये दुआएं पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी बिही औरती व अतजम्मलु बिही फी हयाती। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने मुझे ये कपड़ा पहनाया जिससे मैं अपने शर्म की चीज छुपाता हूँ और अपनी जिंदगी में इसके जरिए खूबसूरती हासिल करता हूँ, और फिर पुराने कपड़े को सदका कर दे तो जिंदगी में और मरने के बाद खुदा की हिफाजत और खुदा के छुपाने में रहेगा, यानी उसका ऐब ढक जाएगा। जब नंगा होता है ना तो फरिश्ते साथ छोड़ देते हैं जो हिफाजत करते हैं, जो ही फरिश्ते साथ छोड़ते शैतान हमलावर होता है। अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने लिबास उतार कर चेंज करते वक्त या नहाते वक्त, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सी चीजों के शर से महफूज रहेंगे। इसके बाद फरमाया, वो लिबास तक्वा, और तक्वा का लिबास। एक लिबास इंसान के जाहिर का है और एक लिबास इंसान के बातिन का है। तकवा कहाँ है? दिल में। अत्तकवा हा हुना,

0: of STDs that have no cure. So when people ask you how you feel about the hood, just sum it up by saying, baby, it's all good.
1: ये किसी ने सवाल किया और बड़ा अहम सवाल है. लिखा है तबर्रुज से मुराद बनाओ सिंघार है और अपने आप को नुमाया करना है. आज की सोसाइटी में अगर किसी भी तकरीब में हम शरीक हो और हमारा स्काफ लेना ही हमको नुमाया कर देता है. लोग खासतौर पर इस बात को नोट करते हैं कि ये स्काफ लेकर नुमाया होना चाह रही है, यानी लोग दीन के रास्ते को सही संत में लेने की बजाय उसको उल्टा रंग देते हैं. ये शुक्र है किसी ने सवाल किया. मैं इस बात को वाजे करना चाहती हूँ और ये बात वाकई बहुत दफा आती है कि ये नुमाया होने के लिए पर्दा किया जा रहा है. आपने सूरत अल अहज़ाब में ही देखा दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, एक तबर्रजना और एक है ये औरफना. तबर्रजना के लिए क्या कहा, ला वला तबर्रजना, और ये औरफना के लिए कहा गया कि अदना ये औरफना. अब मुझे बताइए कि स्काफ लेकर नुमाया होना तबर्रुज में आता है या ये औरफना में आता है, और ये मकसूद है. तबर्रुज कहते हैं इजहार जीनत, यानी अपनी छुपाई जाने वाली चीजों को ना छुपाना और उनको नुमाया करके दिखाना दूसरे को. और ये रखना पर्दे का मकसूद है कि तुम नुमाया नजर आओ कि ये मुसलमान औरत है. और ये अगर कोई नेगेटिव रंग में लेता तो लेता रहे, आप अल्लाह का मकसूद पूरा कर रही हैं नुमाया होकर. बहुत से लोग कहते हैं कि चादर सर पे लटकाने का हुक्म है, नकाब इसमें शामिल नहीं. सर पे कैसे लटकाई जाती है चादर, लटका के दिखाएं सर के ऊपर, ऊपर से ही लटकाई जाती है ना, ऊपर तो नहीं लटकाई जाती. और फिर वो जो हज की रिवायत है, ला तंतकिबुल मरअतुल मुहरिमा, कि एहराम वाली औरत निकाब न पहने, तो इससे क्या पता चलता है कि हालत एहराम में अगर निकाब मना किया गया है तो इसका मतलब है कि आम हालात में निकाब होगा. जब भी उस हालत में मना किया गया ना, अगर आम हालत में भी नहीं तो वहां कहने की क्या जरूरत है कि निकाब ना करो. ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की कल बात हुई थी कि अजवाज मुतहरात के जो घर थे, बुयूत का लफ्ज क्यों आया है. बुनियादी तौर पर आप देखिए कि इस्लाम में बाज करीबी रिश्तेदारों को भी नामहरम करार दिया गया है, और इसी वजह से एक शौहर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बीवी की हिफाजत, उसकी इज्जत और इस्मत की और उसको एक आजादी का माहौल देने के लिए उसको शादी के बाद अलग घर दे. अलग घर का मतलब विल्ला नहीं है, अलग घर का मतलब ये है कि चाहे वो एक कमरा हो या झोंपड़ी हो, लेकिन उसकी प्राइवेसी हो, कि जिसमें वो अपने शौहर के लिए जेब व जीनत कर सके, जिसमें वो अपने रिलैक्स कर सके. क्योंकि जिस घर में नामहरम रिश्तेदार मसलन देवर और जेठ हर वक्त रहते हो बीच में, वहां तो इंसान बाकी जेब व जीनत तो क्या, सर से दुपट्टा भी नहीं उतार सकता, खुले आम काम भी नहीं कर सकता, तो बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो जाता है. तो उसमें आप देखिए कि अज़वाज मुतहरात के भी छोटे छोटे हुजरे थे, तो बड़े बड़े घर नहीं थे, लेकिन हर एक की अपनी प्राइवेसी थी, अपनी दुनिया थी. तो ये औरत की एक आजादी है, ये औरत का एक हक है. बसा औकात माशी मजबूरियां ऐसी होती हैं कि अलग नहीं रह सकते. बाज औकात शौहर बाहर कमाने गए होते हैं, बीवियां अकेली रह रही होती हैं और वो अकेले घर में रहने की बजाय तरजीह देती हैं ससुराल में रहे, फिर वहां और रिश्तेदार भी हैं. तो इन सारी चीजों के बावजूद घरों में कुछ न कुछ गुंजाइश ऐसी जरूर होती है कि जिसमें इकट्ठे होते हुए भी कुछ न कुछ पार्टीशन हो जाए कि जिससे वो लिमिट्स बाकी रहें. दूसरा यह है कि ऐसे रिश्तेदारों के साथ, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देवर के बारे में फरमाया कि अलहम हुवल मौत, कि देवर जो है वो मौत है, यानी बाकी सारे नामहरमों में ज्यादा खतरनाक चीज है. इसलिए कि वो शौहर का भाई है और इस एतबार से भी यानी बहुत करीब तरीन रिश्ता है, लेकिन चूंकि नामहरम है और वो एक रिश्ते का एडवांटेज भी ले सकता है, और बसा औकात ऐसी मुश्किलात सामने आती हैं, इसलिए वहां और ज्यादा एहतियात की बात है. अभी से एहतियात का मतलब यह नहीं कि इंसान घर में जिलबाब पहनेगा, उसमें एक चादर लेके अपना कामकाज करे, बातचीत जरूरत के वक्त कर सकता है, लेकिन अंदाज ऐसा न हो कि जिससे फिर वही बात जो पीछे अभी ये वाकया पड़ा के फला तख्दान बिलकौल, यानी ऐसे मीठे लहजे में बात न की जाए जिससे दूसरा शख्स जो दिल की खराबी में मुबतला, या औरत को ब्लेम नहीं किया जा रहा, क्या कहा गया, दूसरे को ब्लेम किया जा रहा कि जिसके दिल में बीमारी खराबी, वो किसी गलत फहमी का शिकार हो जाए. अब मसला यह ना कि हमारे माशरे में अब ये बहुत से इस तरह के मसाइल हैं कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, ये तीन चार इसी के किस्म की चीटें पड़ी हुई हैं. मैं समझती हूँ कि ये एक हकीकी मुश्किल है और